गुड मॉर्निंग है जी, कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त। देखिए, हमारी दुआ हमेशा यही होती है कि हर वो सुबह जो हमें आपसे मिलवाती है वो आपकी जिंदगी की बेस्ट सुबह हो, हर आने वाला दिन आपकी जिंदगी का बेस्ट दिन हो और आपकी जिंदगी पूरे दिन खुशियों से महकती रहे। और ये दुआ अगर कबूल होती है तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भर जाएगी। और इसी जिंदगी के सफर पर एक बार फिर से अपना साथ लिए मैं सताक्षी आ गई हूँ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ दोस्तों, ये है साथ मेरा आपके साथ इट हैपेंस में। और इस साथ के साथ आज हम फिर से अपने दिन की, अपनी जर्नी की आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड आई रियली विश कि आप भी इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए बिल्कुल ताज़ा तरीन तरीके से तैयार होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं जिंदगी के, हमारी जर्नी के एक और सफर पर। मैं हूँ सताक्षी आपके साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और ये अगला ट्रैक आपके लिए, इसके उस पार होंगी आपके साथ और भी बेहतरीन बात।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर सताक्षी के साथ। इट हैपेंस में आज हम फिर से कर रहे हैं आपके साथ जिंदगी की कुछ खूबसूरत बातें, लेकिन इन बातों की सही शुरुआत के पहले हम विश करेंगे उन्हें जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास। तो जिनका भी आज है हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हम विश करते हैं कि आपको जिंदगी की हर जायज ख्वाहिश मिले और आप जिंदगी का जो भी कदम उठाएं आपको सक्सेस दे, प्रॉस्पेरिटी दे और ढेर सारी लोगों की नजर में इज्जत दे। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी के सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जिंदगी के सफर पे एक दूसरे का हाथ थामे हुए यूं ही चलते रहें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग कैसे हैं, क्या हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बस आप एक दूसरे का साथ निभा पाएं। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, सुनते रहिए सताक्षी के साथ। इट हैपेंस।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रिचू बिस्वानी 1701 एम पर, और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। तो चलिए आज इट हैपेंस में हम बात करते हैं आपके आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जी हाँ, कुछ लोग हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में ऐसे जरूर होते हैं जो अपने आप को समझते हैं सुपीरियर, और इनको लगता है कि ये जब चाहें हमें नीचे दिखा सकते हैं, ये जब चाहें हमारे इमोशंस को यूज कर सकते हैं, और हम इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं पर्सनली इमोशनली, हम समझ नहीं पाते कि हम इनको कैसे हैंडल करें। तो ये याद रखिए कि इनसे इफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लोग सिर्फ खुद को सुपीरियर समझते हैं। ये अपने आसपास जो इनका माहौल है ना, या इनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये उससे ना तो सेटिस्फाई होते हैं और ना ही खुश होते हैं। इन्होंने अपने ईगो को ही सबसे ऊपर रखा है, फिर चाहे वो रिश्ते हो या इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ये हमेशा अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत पावरफुल है, या ये बंदा जो है ये बहुत कुछ जानता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ऐसा शो करते हैं, बल्कि ये खुद अंदर से बहुत ही खोखले हैं। इसलिए इनको जो आप भाव देते हैं ना बिना मतलब का, सबसे पहले वो भाव देना बंद कर दीजिए, वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। इट हैपेंस में स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपका अपना ये ब्रेकफास्ट शो।

रेडियो पिस्तानी 1701 AM पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, जिसमें हमेशा की तरह आज भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें आपसे कर रहे हैं। आपके इस सफर में, इस खूबसूरत मॉर्निंग सफर में हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको पता है आपको कैसा इंसान डिजर्व करता है? जी हाँ, खुद को कम मत समझिए, हमेशा ये मत सोचिए कि हम किसे डिजर्व करते हैं। भाई आपको भी तो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एक जो बंदा जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताना चाह रहे हैं या जो आपकी दोस्ती के लायक है वो बंदा होना चाहिए ना, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। तो आपको एक ऐसा इंसान डिजर्व करता है जिसके पास अगर आप हैं तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है। यानी कि वो हर बात में आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे, उसे ये एहसास हो कि अगर आप उसके पास हैं तो शायद वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। उसको मोटिवेशन जो है वो आपसे मिलेगा, वो जो एक हर जगह उसके लिए स्टैंड लेने वाला इंसान होता है वो उसके पास है, इमोशनली उसे सपोर्ट करने वाला इंसान उसके पास है, तो उसके पास लाइफ में बहुत कुछ है। तो जनाब अगर कोई आपको छोड़ कर गया है तो आपको उस बंदे को बस ये कह के याद करना है कि इस बंदे को मेरी वैल्यू थी ही नहीं, और जिसे आपकी वैल्यू नहीं थी उसके साथ रहना ये तो खुद के साथ ही अन्याय हुआ ना। तो चलिए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ। जी हाँ, इट हैपेंस।

गानों की हैट्रिक एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। इसके पहले कि हम अपने छापन्स के सफर में आगे जाकर कुछ और बातें आपके साथ करें, गानों की हैट्रिक के इस दूसरे ट्रैक को आइए एंजॉय करते हैं।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप और सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक मेरे साथ। गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो, तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: झुमका
1: वेलकम बैक इट हैपेंस के इस बेहतरीन और खास सफर में एक बार फिर से दोस्तों आप हैं सिताक्षी के साथ और मेरे साथ आप सुन रहे हैं ये जो बेहतरीन सफर है हमारा और आपका। और इस बेहतरीन सफर पर आज एक बार फिर से कुछ खास और खूबसूरत बातें। देखिए बातें तो आपसे वैसे सब करते हैं, मतलब आप जिस भी चैनल को ट्यून इन कर लें या अगर आप कुछ लोगों के साथ भी बैठ जाएं तो वो भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बात ये भी है ना कि हमें किसकी बातें अच्छी लगती हैं, हम किसकी बातों से इंस्पायर होते हैं, हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कौन है जिसके साथ बैठकर हमें ये लगता है कि यार ये बंदा जो है ये हमें समझता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जानना और समझना कि कौन सा ऐसा बंदा है जो हमें समझता है और कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ अगर हम बात करें तो हमें अच्छा लगेगा। और क्या जो लाइफ लेसन है ये जो हमें बता रहा है, ये समझा रहा है, ये वाकई हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं, है ना। तो जिंदगी में जब भी किसी के साथ बात करें या किसी की बातें सुनें तो ये सबसे पहले जरूर देखें कि वो आपसे दूसरों को लेकर गॉसिप कर रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रहा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ आगे बढ़े। हाँ, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस और बने रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

0: नेटिव हिस्सानी पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और इस इट हैपेंस के खूबसूरत सफर में हमारी और आपकी जो जर्नी है प्यार भरी खूबसूरत सी जर्नी, इस पर ढेर सारी बातें हमारी हर रोज होती रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन जो
1: शशिकल जी, मैं संदेश और शर्मा तो सुन रही हूँ हो चुके हैं। ईस्ट दी जंग जो पिछले कुछ दिनों तो शांत से हूँ, दोबारा पकते हुए दिखाई दे रही है। जंग रोकने लिए कोई नाजुक जंग बंदी एक बार फिर वे संकट में घिर गई है। इसी दौरान कुवैती फौज ने ऐलान कर दिया है कि उसे इलाके से एक बड़ा मिसाइल से ड्रोन हमला हुआ है। रविवार को ऐलान किया गया है कि अजय तक इस हमले बारे कोई नुकसान या निशाना बनाए गए खेतों बारे कोई जानकारी साझी नहीं की गई। पर इलाके में जो हमले को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया कि देश के कई इलाके में फायरिंग बची है और लोगों को सुचेत रहने की अपील की गई।
2: सैटरडे जून 13
1: उधर छत्तीसगढ़ में भयानक गर्मी ने जंगली जीव वाले एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है, जिस कारण हुआ तक 700 से ज्यादा पंछियां चमगिदड़ा तो और जानवर मौत हो चुकी है। सुबह उच्च तापमान जंगली जीव वाले घातक सिद्ध हो रहा है, जिस माहिरा वालों इकोलॉजिकल एमरजेंसी करार दिता गया। रिपोर्ट अनुसार वक्त जिले में 500 से ज्यादा चमगिदड़ा की मौत हो चुकी है। कांकेर जिले के सरूना इलाके में पिछले कुछ दिनों तो चमगिदड़ दरख्तों तो डिग के मार रहे ने। इसे तरह कोरबा जिले में भी लगभग 200 चमगिदड़ मरे हुए हैं। माहिरां का कहना है कि चमगिदड़ गर्म खून वाले जीव होने कारण तापमान में होने वाले बदलाव प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और गर्मी कारण होने वाले तनाव को सहन नहीं कर पा रहे। उधर विश्व सेहत संगठन वालों अफ्रीकी देशों में फैले इबोला वायरस को लेकर जारी किए गए ग्लोबल अलर्ट तो बाद भारत सरकार पूरी तरह के मुस्तैद हो गई है। हाल ही में अहमदाबाद और बेंगलुरु में अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री वाले दो शक्की मरीज सामने आने के बाद केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने देश के सारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से निगरानी और स्क्रीनिंग के नियम बेहद सख्त कर दिए ने। केंद्रीय सेहत सकत्र वालों जारी ताजा दिशा निर्देशों मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद समेत सारे मुख्य हवाई अड्डे अफ्रीकी देशों तो आने वाले हर यात्री लई अपनी सेहत की जानकारी देना लाजमी कर दिया गया। हवाई अड्डों से विशेष थर्मल कैमरे लगाए गए हैं ताकि तेज बुखार वाले यात्रियों तुरंत पछाण की जा सके। जेकर किसी यात्री में बुखार, सिरदर्द या उल्टी वर्गे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्होंने हवाई अड्डे से ही बने आइसोलेशन बे में ले जाकर तुरंत सरकारी अस्पतालों में क्वारंटीन किया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी वालों सुनील जाखड़ का कार्यकाल पूरा होने ते केवल सिंह ढिल्लों नवा पंजाब प्रधान थाप दिता गया। इस मगरों हुण सुनील जाखड़ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने आख्या है कि उन्होंने पंजाब के लोगों और संगठन नाल रिश्ता हमेशा किसी भी अहुदे या जिम्मेवारी तो काफी उपर रहा है और यह नाता अजे भी उसे प्यार वचनबद्धता से समर्पण नाल जारी रहेगा। इस नाल ही उन्होंने केवल सिंह ढिल्लों नूं भी नवी जिम्मेवारी लई शुभकामनावां दित्तियां ने। सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब भाजपा के प्रधान वजो सेवा करना उन्होंने बहुत वड्डे वाली माण अते जिम्मेवारी की गल है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जताया गया विश्वास अते गृह मंत्री अमित शाह तो लगातार मिलिया मार्गदर्शन इस पूरे सफर दौरान उन्होंने लई ताकत का स्थाई स्रोत रहा है। उन्होंने यह भी आख्या है कि बीएल संतोष तो प्राप्त संगठनात्मक सिख्या दिशा निर्देशों नाल ही जगत प्रकाश नड्डा मौजूदा राष्ट्र प्रधान नितिन नवीन जी का उत्साह सहयोग उन्होंने सदा ही बहुत कीमती रहेगा। उधर जम्मू कश्मीर अते देश लई बहुत माण वाली गल है कि भारतीय पैरा ताइक्वांडो एथलीट चंदीप सिंह ने मंगोलिया विच आयोजित 11वीं एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप विच 80 किलोग्राम तो वध वर्ग विच सोन तगमा जित्तिया है। इतिहासिक प्राप्ति जम्मू कश्मीर लई एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप विच पहला सोन तगमा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय खेडां विच केंद्र शासित प्रदेश लई एक इतिहासिक पल है। एशिया भर दे चोटी दे पैरा एथलीट दे खिलाफ मुकाबला करदे होए चंदीप सिंह ने हैवी वेट श्रेणी विच सिखरला सम्मान हासिल करन लई एक शक्तिशाली अते अनुशासित प्रदर्शन कीता। उधर अमरीकी फौज ने दस्या है कि ईरान वालों बुधवार देर रात कुवैत मिसाइलां दागियां गईयां जिसनों कुवैत वालों सफलतापूर्वक रोक दिता गया। अमरीका ने अपने प्रमुख खाड़ी सहयोगी ते होए इस हमले नूं पिछले महीने हुई नाजुक जंगबंदी की एक गंभीर उलंघना दस्या है। घटना अमरीका ते ईरान दरम्यान चल रहे तनाव तो होर वध सकती है। यह मामला उदों सामने आया जदों हफ्ते के शुरू विच अमरीका ने ईरानी मिसाइलां लांच साइट माइन विछाउण वालियां किश्तियां ते हमलावर ड्रोना ते हमले किए सन जो कि हरमूज दे नेड़े खतरा पैदा कर सकते हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने कणपछाते खाड़ी राज विच स्थित अमरीकी बेस ते हुए हमलों के बदले वजों यह जवाबी कार्रवाई की है। कुवैत की फौज ने भी वीरवार को मिसाइल ते ड्रोन हमले की पुष्टि की, हालांकि निशाना बनाए गए स्थानों बारे विस्तृत जानकारी सांझी नहीं की गई। उधर दूजे पास माउंट एवरेस्ट की चोटी ते पहुंचना हुण दुनिया दे सब तो वड्डे साहसा विचों एक मनिया जांदा है, पर इस दे पिछे दी सच्चाई बहुत भयानक ते रूकंबाऊ है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह सफर ना सिर्फ शरीरिक सगो मानसिक तौर ते इंसान नूं तोड़ के रख दिंदा है। समुद्र तल तो 8800 मीटर की उचाई जिस नूं डैथ जोन कहा जांदा है, उत्थे पर्वतरोहियां नूं अक्सर लंबी कतारां च इंतजार करना पैंदा है। इस उचाई ते आक्सीजन की कमी कारण लाइना विच खड़े होना सीधे तौर ते मौत नूं सदा देना बराबर है। इथे समा बहुत सीमित हुंदा है, जेकर कोई ज्यादा देर रुकदा है तां उसकी मौत निश्चित है। एवरेस्ट दे वातावरण इन्ना सख्त है कि इंसान दा शरीर जिंदा रहने की कोशिश विच अपने आप नूं लगभग खत्म करना शुरू कर दिता है। पर्वतरोहियां नूं लगभग दो महीनों तक -20 डिग्री सैलसीयस जिहे जमा देने वाले तापमान विच सौना पैंदा है। यूवी किरणा दा पद्धर 20 तक पहुंच जांदा है जो चेहरे की चमड़ी नूं बुरी तरह साड़ देंदे हन। उचाई दे कारण शरीर विच खून दा संचार सही ढंग नाल नहीं हुंदा, इस जिस नाल उंगलां ते पैरां विच फ्रॉस्टबाइट दा खतरा पैदा हो जाता है। पूरी मुहिम दौरान एक व्यक्ति का भार 20 पौंड घट सकता है। चढ़ाई दौरान पर्वतरोहियां नूं खूबू आइसफॉल वर्गियां खतरनाक थावां तो कई बार गुजरना पैंदा है जिथे बर्फ के वड्डे तोते किसी भी पल डिग के जान लै सकते हैं। रस्ते विच डूंघियां खाइयां दे उपर लटकदियां लगभग 50 पौड़ियां पार करनियां पैंदियां हन। सब तो दुखदाई पहलू यह है कि रस्ते विच पर्वतरोहियां नूं मर चुके लोगों दियां लाशां कोलों लंघना पैंदा है। शिखर वल वधदे होए कई बार 24 तों 100 घंटियां तक बिना सौंदे गुजारने पैंदे हन। इस खतरनाक मुहिम लई एक व्यक्ति नूं घट्टो घट 50,000 अमरीकी डॉलर लगभग 40 लाख रूपए तो वध खर्चने पैंदे ने। इन्हां जोखम ते पैसा खर्चण दे बावजूद कई बार इंटरनेट ते अजिहे लोगों द्वारा आलोचना का सामना करना पैंदा है जिन्हां ने कदे अजिहियां स्थितियां का अनुभव भी नहीं किया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ bisoni 107.1 FM। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: मुंडा सदुआ।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसौनी 101.1 ते जी आपके संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच आंदा है जमाने को दिखाना है। नासिर हुसैन दे डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है की है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोल्हापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने पहले ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं सी ए दिती सी, इसलिए इस फिल्म तो भी बहुत उम्मीद सी। फिल्म दा म्यूजिक आई जी बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर दा गाना दिल लेना खेल है दिलदार का जो पहाड़ा विच शूट किया गया सी एक कल्ट चार्ट बस्टर बनया हुआ है। रिलीज होने ते दर्शकों नूं कहानी थोड़ी पुरानी अते किसी पिटी लगी जिस दे कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई अते बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साल बाद ना ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग अते बेहतरीन गाने ने फिल्म नूं यूथ ऑडियंस वल्लों वार वार देखण ते मजबूर कर दिता अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्के फुल्के फिल्मां दे विचों एक है।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
4: ਸਮ ਨੰਬਰਸ ਕੈਰੀ ਵੇਟ ਬਿਯੋਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ। Q11700, ਦ ਮਾਸਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਅ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਪਲੇਟ, ਫਰਸਟ ਇਸ਼ੂਡ ਇਨ 1922, ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਵੈਨੈਂਸ, ਓਨਡ ਆਊਟਰਾਈਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੈਡੀ। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqi.
6: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Adha May 27th.
7: शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिले। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी 101.0 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राही बदल गए थे। फिल्म रिलीज हुई सी 1985 दे विच। रवि टंडन दे डायरेक्शन विच बनी राही बदल गए ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है जिसनु रिलीज होण ते पहचान नहीं मिली जिसदे बाद विच ओ हकदार सीगे उदो। इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी अते पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गे जानी मानी एक्ट्रेसेस दे नाल डबल रोल किया। फिल्म की कहानी गलतफहमियां प्यार अते परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारां दे इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बुनी हुई है। आरजी बर्मन का म्यूजिक इसकी सब तो वड्डी यूएसपी सी। 1980 दे दहाके दे विचकार जद स्क्रीन ते एक्शन अते बेरहम विलन आम गल सी इस शांत अते प्यारी लव स्टोरी नू थिएटर ते आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समय विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम अते मधुर म्यूजिक वालियां फिल्मां लभदे हैगे ने तां यूट्यूब अते ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज अते तारीफ साबित करती है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई नाल जुड़ा महसूस किया है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। जबरदस्त प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप भी आ जाइए क्योंकि आपके आने के बाद ही तो असली मजा शुरू होता है। आपके लिए ही ये प्रोग्राम है, आपसे ही ये प्रोग्राम है और मैं यहाँ आ गई हूँ आपको फिर से एंटरटेन करने, फिर से मजेदार तरीके से और भी मजेदार गाने सुनाने, और भी मजेदार बातें सुनाने और आपके साथ बहुत सारी गपशप करने। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। अब आपको पता ही, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे प्रोग्राम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्दी रिचुअल के साथ, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। लंबी गहरी सांसें हम लेते हैं और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, ये इसलिए ताकि हम फोकस्ड रहें, ये इसलिए ताकि हम प्रोडक्टिव रहें, ये इसलिए ताकि हम बहुत ही अच्छे से सुकून के साथ एकदम अच्छे शांत मन के साथ अपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम को कम्प्लीट कर पाएं। और ये हर किसी चीज की शुरुआत में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से फील होगा। आपको अच्छा फील तो होगा ही और साथ में आप अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से उस चीज को कम्प्लीट कर पाएंगे एकदम मजेदार तरीके से। सो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और आप बिना इंतजार किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है प्रोग्राम की शुरुआत होती है बढ़िया से गानों के साथ और जो सबसे पहले गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है बहुत ही ज्यादा खास। उसका नाम है परदेसिया और ये है सोनू निगम का गाना। और सोनू निगम के गाने हमें कितने पसंद है इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी खूबसूरत आवाज है तो इस खूबसूरत से आवाज से ही ये खूबसूरत सी हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होनी चाहिए। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक रहा है हमेशा से। और अभी कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और वहां पे मैं एक कॉमेडियन को देखती हूँ। उन्होंने एक मीम डाला होता है और वो मीम जो है वो कहीं ना कहीं सेंस बना रहा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको रेज कर रहा था। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आपको भी बताया जाए। वेल, इट्स फनी, बट उसमें लिखा हुआ था कि अर्लियर आई यूज टू थिंक व्हाई डू पीपल रिटायर। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अर्लियर आई यूज टू थिंक व्हाई डू पीपल रिटायर, but after 2 years of work experience I think 25 should be the retirement age, and I was like not if you love your work, not if you feel passionate about your work। क्योंकि जब आप अपने प्यार से काम करते हो ना, आपको रिटायरमेंट का कोई भी ख्याल नहीं होता। इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत वक्त तक आपको रिटायरमेंट का ख्याल नहीं होता है। लेकिन अगर आप सच में मजदूरी कर रहे हो, वो कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहे हो जहां पे आपको प्यार नहीं है उस काम से, लेकिन उस काम से आपको प्यार करने की एक्टिंग जरूर करनी पड़ती है, तो फिर तो डेफिनेटली 25 पे रिटायर होने का मन डेफिनेटली करेगा। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस ना की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
5: जी हाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, एक और बात जो इंटरनेट हमें बहुत कुछ बेसिकली सिखाता है, लेकिन एक और चीज जो इंटरनेट को स्क्रॉल करते हुए मैंने देखी एंड आई वाज लाइक ओके आई शुड लिटरली टॉक अबाउट इट। तो वहां पर लिखा हुआ था, कौन बोलता है वीकेंड पे कॉरपोरेट मजदूर इंजॉय करता है। जी हाँ, वहां पे बोला हुआ था, कौन बोलता है वीकेंड पे कॉरपोरेट मजदूर इंजॉय करता है, वो वीकेंड पे बस अपनी नींद पूरी करता है। एंड आई वाज लाइक या That's true. But yeah, again, आप मुझे ये बताइए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? क्या आप उस कैटेगरी में हो जो लिटरली पूरा का पूरा वीक एंजॉय करते हो, अपने काम के साथ साथ अपने एंजॉयमेंट का भी ख्याल रखते हो, बड़ी खुशी का इंतजार नहीं करते हो, हर छोटी खुशी को फटाफट थाम लेते हो और उसको एंजॉय करते हो, या फिर लिटरली वीकेंड पे आप भी नींद पूरी करते हो? क्योंकि लेट्स बी रियल, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुंभकर्ण हैं और उनको नींद बहुत ज्यादा प्यारी है, और जो सबसे बड़ी दिक्कत वर्क डेज हमें देते हैं वो हमारी नींद पूरी नहीं होती है, वही दिक्कत है सबसे बड़ी। तो वीकेंड पे बहुत सारे लोग जो है वो नींद पूरी करते हैं। आई गेस मैं भी इस कैटेगरी में आती हूँ। जी हाँ, मतलब मैं एंजॉय भी करती हूँ वीकेंड को, लेकिन यहाँ पर अगर कहना पड़े कि नींद पूरी करता है ये वाली बात, तो मैं भी इस कैटेगरी में आती हूँ। आप मुझे बताइए, आप भी क्या वीकेंड पे अपनी नींद पूरी करते हो या नहीं करते हो? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर एक और बात हम आपको बताने वाले हैं, एंड ये बात आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है अगर आप लियोनेल मेसी के फैन हो तो। जी हाँ, लियोनेल मेसी अगेन टैलेंटेड तो है ही, लेकिन वो वेल्दी भी होते जा रहे हैं। मतलब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जी हाँ, लियोनेल मेसी ने क्रॉस कर लिया है $1 बिलियन की नेटवर्थ का आंकड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओके ठीक है निव्या शर्मा, बाकी सब तो ठीक है, मेसी ने 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, तो मुझे ये बताओ कि रोनाल्डो कहां पर है, रोनाल्डो इससे पीछे है या आगे है, कहां है? बिकॉज आई रियली वांट टू नो। मुझे पता है कि जब भी हम बात करते हैं इन दो बड़े सुपरस्टार्स के बारे में, तो बात होती है अगले वाले के बारे में। मतलब अगर हम रोनाल्डो के बारे में बात करते हैं, उनके माइलस्टोन्स की बात करते हैं, तो बात आ जाती है ओके मेसी क्या कर रहे हैं, मेसी ने तो नहीं कर दिया, मेसी क्या कर चुके हैं। जी हाँ, और अब जब मेसी ने किया है तो ऑफकोर्स आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि रोनाल्डो ने क्या किया। वेल, इस मामले में रोनाल्डो पहले से ही बने हुए हैं नंबर वन, क्योंकि वो $1.2 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं काफी वक्त पहले। मतलब उनकी जो नेटवर्थ है वो $1.2 बिलियन है, मतलब $1 बिलियन की नेटवर्थ का आंकड़ा वो पहले ही पार कर चुके थे। लेकिन अब जो है वो लियोनेल मेसी भी इस आंकड़े में, इस लिस्ट में जो है वो शामिल हो गए हैं इस आंकड़े को पार करके। सो आप मुझे बताइए, आप मेसी फैन हो या रोनाल्डो फैन हो, या फिर आपको दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं? इतना तो मैं पक्का पता है कि आपको दोनों तो नहीं पसंद हो सकते, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिनको दोनों ही पसंद होंगे, अदरवाइज हम सब ने एक साइड तो चूज की होती है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, अगर हमने किसी एक आइडल को चूज नहीं किया तो क्या किया, है ना? यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future with upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word BRISBANE. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Hi, this is Amitabh Bachchan.
5: And aap sun rahe hain Radio BRISBANE.
6: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. And aap sun rahe hain Radio BRISBANE.
7: Hi, this is Salman Khan aur aap sun rahe hain Radio BRISBANE.
8: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio BRISBANE.
9: To everyone tuning into Radio BRISBANE, this is Alia.
10: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio BRISBANE.
11: To everyone tuning into Radio BRISBANE, this is Shah Rukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio BRISBANE.
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, एक चीज तो पक्की है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमसे बहुत ही आगे चल रही हैं. आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, आप तुम कहोगी चाइना, जापान, मतलब इन दो कंट्रीज के अलावा और किसका नाम ले सकती हो. वेल आई एम गोना नेम अ कंट्री जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो बहुत ही खूबसूरत माउंटेन व्यूज से भरी हुई है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्विट्जरलैंड. जी हाँ, मतलब स्विट्जरलैंड इस जिंदगी में एक बार तो जरूर जाना चाहिए. ये किसी बहुत ही वाइज इंसान ने कहा है एंड मैं उस वाइज इंसान की पूरी पूरी बात मानती हूँ. आप लोग बोलोगे कि वो कौन वाइज इंसान है. वेल, वो वाइज इंसान निव्या शर्मा है. जी हाँ, सो मतलब कहने का यही है कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड और वो जो स्विस एल्प्स हैं उनको देखने का एक मौका तो हमें अपनी जिंदगी में जरूर ढूंढना चाहिए और उस प्लान को हमें बिल्कुल भी रद्द नहीं करना है. सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में ही. अब आपको तो पता ही है स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत है, कितनी ही सुंदर वहां पर जो है ज्यूरिच से लेके लॉटनबर्ग से लेके इतनी खूबसूरत जगहें हैं. वहां के जो पुराने घर हैं वो आज भी इतने ज्यादा सुंदर और इतना एस्थेटिकल लुक देते हैं कि आप लिटरली उन घरों के दीवाने हो जाओगे, उस जगह के दीवाने हो जाओगे. लेकिन एक चीज जो कि टेक वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड को आगे बनाए हुए है वो है वहां की ट्रेन. जी आप लोग बोलोगे ट्रेन, निव्या शर्मा हर एक कंट्री के पास ट्रेन है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. वेल, मैं आपको कह रही हूं कि ट्रेन आपने देखी है इंसानों के लिए, लेकिन क्या आपने देखी है कार ट्रेन. मतलब अगर आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बीच में एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, गेस व्हाट, आप कार ट्रेन से उसको पार कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब आप ड्राइव पे जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी में घूमना चाहते हो तो आप अपनी गाड़ी में घूम सकते हो। जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि अब तो एक पहाड़ आ गया, अब इस पहाड़ को कैसे क्रॉस किया जाए, जो कि कार से बाय रोड जो है वो बहुत ही मुश्किल है करना, तो वहां पे ट्रेन सर्विस है जो कि आपको आपकी कार को उस ट्रेन पर रख देगी, आप उस पे सवार ही रहोगे और वो आपकी कार जो है उस ट्रेन के जरिए किसी और जगह जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पे आपको पहुंचा देगी। मतलब आप लिटरली टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आप अपनी गाड़ी में बैठो, जब तक आप ड्राइव कर सकते हो ड्राइव करो और फिर उस गाड़ी में अपनी अपनी ट्रेन में उस ट्रेन में अपनी गाड़ी को बिठाओ और फिर उस गाड़ी में खुद को बैठाओ और फिर आप निकल जाओ और जब स्टेशन आ जाएगा तो उतरो और फिर से अपना रोड ट्रिप शुरू कर दो। एंड आई वॉज लाइक वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। पहाड़ों वाली जगह इस दुनिया में और भी है, लेकिन और कौन सी जगह ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जरूर मुझे बताइएगा अगर आप किसी और कंट्री के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि सच में जो क्रिएटिविटी नजर आती है वो एकदम रियल है। खासकर मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की। अभी कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मैंने देखा व्हाई इज मंडे सो फार फ्रॉम फ्राइडे बट फ्राइडे इज सो क्लोज टू मंडे। या दैट इज ट्रू। एंड यू नो व्हाट, ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े लोग बहुत वक्त से पूछ रहे हैं, मतलब ये सबके दिमाग में क्वेश्चन है पर आंसर किसी के पास नहीं है। जिसने भी ये पूरा सिस्टम बनाया उसने ये सिस्टम ऐसा क्यों बनाया, मतलब फ्राइडे एकदम छू मंतर होके निकल जाता है, संडे और सैटरडे भी एकदम छू मंतर होके निकल जाता है और मंडे ऐसे आ जाता है ढड़ा करके, लेकिन जो मंडे आ जाता है तो फ्राइडे आने का नाम ही नहीं लेता है। लाइक वाई। जिसने भी ये सिस्टम बनाया था उसे दो बार फ्राइडे और दो बार वीकेंड रखना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप जरा बोलोगे कि निव्या शर्मा, देयर आर पीपल जो कि सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं लेते हैं, लाइक लुक एट एलन मस्क। अरे ठीक है, एलन मस्क ने कर लिया इतनी तरक्की, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमको इतनी तरक्की करनी है, हम थोड़ी कम तरक्की से भी चला लेंगे, बस वीकेंड अगर दो मिल जाते तो मजा आ जाता। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या

0: यहाँ सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी पूछा तो
1: तुमने ओम जी और सिस्टर बहन के बारे में सुना है? प्रोफेशनल सीनियर 24/7 स्टॉप डायग्नोस्टिक्स फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टिमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और

0: OMSORG. Website ozone.co.in. WhatsApp या call कीजिए. India number 8448381360. Ozone. जहां care का मतलब है true care.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में. बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाई मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि काश हम जब बच्चे होते हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाता. जी हाँ. सो इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक बहुत ही फेमस डीजे डिप्लो ने एक बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया. वेल ऑफकोर्स ही इज अ ग्रेट डीजे, वो तो एक बात है ही, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए जो किया वो और भी ज्यादा खतरनाक है. जी हाँ. सो जो उनके जो बेबी है, उनका जो बेटा है, वो ग्रेजुएट हुआ और प्लेवे से ग्रेजुएट होने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने एक मिनी रेव पार्टी ऑर्गेनाइज किया. आप लोग बोलोगे रेव पार्टी? वेल ऑफ कोर्स उन्होंने रेव पार्टी एग्जैक्टली रेव पार्टी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक पार्टी अपने बेटे और उसके सभी फ्रेंड्स के लिए ऑर्गेनाइज की, जहां पर वो खुद डीजे बने और उसके बाद उन्होंने सबको वहां पर डांस करवाया. माइंड यू, वहां पर और भी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे, जो बच्चे वहां पर आए हुए थे, और उसके बेटे के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था. मतलब किंडरगार्टन से उन्होंने ग्रेजुएट किया और वहां पर उस ग्रेजुएशन के बाद पिता ने इतना प्राउड फील किया कि उन्होंने सोचा कि यार, मतलब मैं हर किसी के लिए डीजे बनता हूं, इतने बड़े बड़े लोगों के लिए डीजे बनता हूं, व्हाई नॉट बी अ डीजे फॉर माय ओन बेबी. सो ऑफकोर्स उन्होंने की, और वहां पर वो जो वीडियो है वो सब के सब देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है. पता नहीं कितने व्यूज जो है वो उस वीडियो पर हो गए. एंड यू नो व्हाट, आई वाज लाइक कि वाह, सच में अगर हमारे बचपन में भी हमारे साथ ऐसा होता तो कितना कूल होता. मैं लिटरली अपने मम्मी पापा के पास ये वीडियो लेके गई एंड देवर लाइक, अच्छा पढ़ाई में ध्यान तुम्हारा वैसे ही नहीं होता था तुम लोगों का, अगर तुमने हमने तुम्हारे लिए ये किया होता तो तुम लोग बोलते अब तो पढ़ाई करनी ही क्यों है. मॉम डैड ना, खासकर इंडियन मॉम डैड ये बात कभी भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, वो तो डिफरेंट ही जोन में चले जाते हैं. जी हाँ. बट द थिंग इज कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कूल है. लाइक लिटरली एक बहुत ही फेमस डीजे ने डीजे बनने की कोशिश की अपने किंडरगार्टन से ग्रेजुएट किए हुए बेटे के लिए. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है.

जी दोस्तों, इसी के साथ एक इंटरव्यूअर कैंडिडेट से पूछता है व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। जी हाँ, तो कैंडिडेट सामने से बोलता है आई कैन फ्लर्ट एनीवेयर। जी हाँ, इंटरव्यूअर बोलता है एंड व्हाट्स योर वीकनेस, तो कैंडिडेट सामने से बोलता है दोज ब्यूटिफुल आईज ऑफ योर्स। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फ्लर्ट कर सकते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके के लोग होते हैं। लिटरली, मतलब यहाँ पे भी फ्लर्टिंग शुरू हो गई है। मतलब इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है स्ट्रेंथ क्या है, तो सामने से जो है वो कैंडिडेट बोल रहा है कि फ्लर्ट करना ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वो पूछ रहा है कि वीकनेस क्या है, तो वो कह रहा है कि वीकनेस तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मेरी वीकनेस है। मैं इतना कहूंगी कि ऐसा जवाब सिर्फ जेंजीज दे सकते हैं। लिटरली जेंजीज कैन लिटरली डू इट। जी हाँ, ऑल द जेंजीज बहुत ज्यादा अलूफ होते हैं, लेकिन वो ऐसे खतरनाक जवाब दे देते हैं सामने से कि आप लोग बोलोगे कि है हमारे जमाने में तो ऐसा होता ही नहीं था, व्हाट इज हैपनिंग, लाइक कि कौन सी दुनिया चल रही है। बट या, इट इज व्हाट इट इज, जेंजीज आर लाइक दैट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों यहाँ पर अगेन एक विजडम वाली बात मैं करने वाली हूँ। वेलकम टू डे 3 ऑफ गिविंग यू मैरिज विजडम विदाउट मी बीइंग मैरिड। जी हाँ, अगेन तो वहां पर मैंने कुछ पढ़ा और मुझे लगा कि मैंने ऑफकोर्स कुछ पढ़ा है जो कि अच्छा है और जिससे कि लिटरली मेरे लिसनर्स को अच्छी एडवाइस मिल सकती है, तो मुझे जरूर शेयर करना चाहिए। और वहां पे लिखा हुआ था कि यू नो व्हाट, आई हैव अ हेडेक बट इफ आई टेल माय मैन ही विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी। सो अगेन एवरीवन नोज अबाउट कि क्या क्या चीजें करने से क्या क्या होता है, लेकिन जब आपका पार्टनर कुछ बोले, खासकर आपकी फीमेल पार्टनर कुछ बोले कि ओके यू नो व्हाट, आई हैव अ हेडेक या मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उनको वैदिक ज्ञान नहीं देने हैं, आपको आयुर्वेदा की किताब खोल के नहीं बैठना है, आपको ये नहीं करना है कि अगर तुमने पानी पिया होता अच्छे से तो ये नहीं होता। आपने कहा होता कि अगर जो तुमने ये खाना खा लिया था बाहर जाके गड़बड़, वो नहीं खाया होता तो अच्छा होता, ये सब आपको नहीं कहना है। अगर वो आपसे ये कह रही हैं तो उसका मतलब एक ये ही बात है कि वो चाहती हैं कि आप उनको प्यार से ट्रीट करो, बेबी की तरह ट्रीट करो, बिकॉज दैट्स व्हाट शी वांट। या वाइफ्स आर लाइक दैट, विमेन आर लाइक दैट। सो व्हेनेवर शी सेज कि यू नो व्हाट, आई थिंक मुझे स्टमक एक हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, तो शी डज नॉट वांट योर वैदिक ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान, शी wants your love. Yeah, that's what it is about. Yahan par ek aur gana aap sab ke liye meri taraf se.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, आपने सही सुना, अब जा रहे हैं हम, वापस आएंगे अब मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और मैं यही कहूंगी कि हमेशा हमेशा अपने आजू बाजू वाले लोगों को काइंडनेस के साथ ट्रीट करते रहिए। इनफैक्ट नॉट जस्ट आजू बाजू वाले लोगों को, बट स्ट्रेंजर्स को भी काइंडनेस से ट्रीट कीजिए। देखिए उनका भी कैसे दिन बन जाता है आपकी वजह से, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो या, काइंडनेस जब भी दिखाने का मौका मिले जरूर दिखाइए, बिल्कुल पीछे मत रहिए। एंड या, दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन एक बहुत ही मजेदार सा गाना है, और इसका नाम है नाल नचना। जी हाँ, नाल नचना, और इसका मतलब है कि मैं तेरे साथ डांस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। तो सुनते हैं इसको एंड मिलते हैं अब आपसे आगे। बाय बाय, सी यू, टाटा।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तुमने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे
1: ऑस्ट्रेलियन ऑन सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ओर, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के धर जा रही हो।
5: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे June 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू ब्रिस्बानी.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
4: आज

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। 2032 ओलंपिक से पहले ब्रिस्बेन के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में आया भारी उछाल, ब्रिस्बेन के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। साल 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक से ठीक पहले यहां के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं ब्रिस्बेन में खेले गए ADF रग्बी चैंपियनशिप में सेना का दबदबा। ब्रिस्बेन के एश ग्रोव में स्थित GPS रग्बी क्लब में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स यानी कि ADF रग्बी चैंपियनशिप का शानदार आयोजन हुआ। इसमें एयरफोर्स और नेवी की महिला टीमों ने हाथ मिलाकर आर्मी की टीम का मुकाबला किया। वहीं नेशनल चैंपियनशिप में चमके ब्रिस्बेन के स्विमर्स। मास्टर्स स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया नेशनल चैंपियनशिप में ब्रिस्बेन और आसपास के डिफेंस मेंबर्स और लोकल स्विमर्स ने पानी में अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरा। वहीं ASX का सिंपली से बाहर होना चर्चा में फाइनेंस की दुनिया से ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने सिंपली में अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन में कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत, मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम के मिजाज की बात करें तो ब्रिस्बेन में ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। सुबह और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं वीकेंड के लिए ब्रिस्बेन के साउथ बैंक पर खास फूड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। और चलते चलते एक मजेदार खबर है ये, आने वाले वीकेंड को शानदार बनाने के लिए ब्रिस्बेन के मशहूर साउथ बैंक पर एक स्पेशल विंटर फूड फेस्टिवल की तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का सीमा सुरक्षा पर बड़ा ऐलान। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में एक बड़े सुरक्षा प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने के भीतर देश की सीमाओं पर एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से तैनात कर दिए जाएंगे। वहीं कोल इंडिया में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, बिजनेस की दुनिया से बड़ी खबर है। भारत सरकार ने सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने का बड़ा फैसला किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में धूल और प्रदूषण के खिलाफ नया एक्शन प्लान। दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधारने और उड़ती धूल से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने 5 बड़े रास्तों कॉरिडोर्स को नए सिरे से डेवलप करने का काम शुरू किया है। वहीं दिल्ली को मिला हरियाणा से एक्स्ट्रा पानी, संकट से थोड़ी राहत। दिल्ली में पानी की बढ़ती किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए इमरजेंसी वाटर रिलीज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी कमी देखी जा रही थी। वहीं नीट पेपर लीक केस में नया मोड़। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। इस केस में गिरफ्तार किए गए कोचिंग सेंटर के फाउंडर के नाबालिग बेटे को पुलिस अपना स्टार विटनेस यानी मुख्य गवाह बना सकती है। वहीं यूपी में तकनीकी खराबी के कारण SSC एग्जाम कैंसिल। उत्तर प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों से निराशा करने वाली खबर है। यहां चल रहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को कुछ सेंटर्स पर अचानक टेक्निकल फॉल्ट यानी कंप्यूटर और सर्वर में आई खराबी के कारण कैंसिल करना पड़ा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले रूस ने बनाया खतरनाक इबोला वायरस के नए स्ट्रेन का टीका। मेडिकल साइंस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों ने कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला के एक नए और खतरनाक स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। वहीं अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए कनाडा ने लागू किए सख्त नियम। इसी इबोला संकट को देखते हुए कनाडा सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। कनाडा ने फैसला लिया है कि इबोला प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों को देश में एंट्री करते ही 21 दिन के लिए सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं बायजूस के फाउंडर को सिंगापुर में 6 महीने की जेल की सजा। एजुकेशन टेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायूज रविंद्रन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिंगापुर की एक अदालत ने एसेट डिस्क्लोजर ऑर्डर्स यानी अपनी संपत्तियों की सही जानकारी ना देने और अदालती आदेशों की अनदेखी करने के मामले में उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। वहीं अमेरिका में केमिकल टैंक फटने से बड़ा हादसा, एक की मौत। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से एक दुखद दुर्घटना की खबर है। वहां के लॉगब्यू में स्थित एक पैकेजिंग मिल में एक बड़ा केमिकल टैंक अचानक फट गया। इसी के साथ 80वें जन्मदिन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया सुपर फिट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ दिनों में अपना 80th बर्थडे मनाने वाले हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने अपनी ताजा मेडिकल रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि वो परफेक्ट हेल्थ में हैं। वहीं नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज के पीछे की मर्डर मिस्ट्री सुलझी, आरोपी को सजाए मौत। नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज थ्री बॉडी प्रॉब्लम को बनाने वाले चाइनीज गेमिंग बिलियनेयर की हत्या के मामले में चीन की अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फ्रांस ओपन में भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी निशेष वसावरेडी ने रचा इतिहास। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से एक ऐतिहासिक खबर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर प्रोफेशनल टेनिस में आए भारतीय मूल के खिलाड़ी निशेष वसावरेडी ने दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ी टेलर फ्रिट्स को हराकर तहलका मचा दिया है। वहीं आईपीएल 2026 रजत पाटीदार के तूफान में उड़ा गुजरात आरसीबी फाइनल में। आईसीसी और आईपीएल के दीवानों के लिए कल की रात आरसीबी के नाम रही। रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 93 रनों की आतिशी पारी खेलकर गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर दिया। वहीं आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की महाभिड़ंत होने वाली है। इसी के साथ चेस किंग्स मैग्नस कार्लसन ने खुद के खेल पर कसा अजीब तंज। शतरंज की दुनिया के बेताज बादशाह मैग्नस कार्लसन अपने एक अजीब बयान को लेकर चर्चा में हैं। एक मैच के दौरान एक आसान चाल चूकने और चेकमेट करने के बजाय क्वींस को करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर तंज कसा है। इसी के साथ नॉर्वे चेस 2026 में भारत के प्रज्ञा नंदा और गुकेश की धमाकेदार शुरुआत। ओस्लो में शुरू हुए नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा और डी गुकेश ने अपने पहले ही दौर के मैचों में शानदार जीत की दर्ज की। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द
2: क्वींसलैंड। अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading Containers for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते आज।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड़ा।
3: I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vinay. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग ऑल इनकम

5438 3630 5438 via mobile 0415 952 660 0415 952 660.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

ना बदला में, ना बदला।

0: फेस्टिवल्स पे आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला।
1: सशिका जी, मैं संदेश और शर्मा तुझसे सुन रही हूं। रेडियो सोनी 101 MTG पे हो चुके हैं। तब तक हम तक का टॉप चल कर दिया शुरू
0: 10 बजे से रात 8 बजे तक
1: उदल मिडिल ईस्ट दी जंग जो पिछले कुछ दिन से शांत से हम दोबारा पक हुई दिखाई दे रही है। जंग रो पर ले कोई नाजुक जंग बंदी एक बार फिर बड़े संकट में घिर गई है। इसी दौरान कुवैती फौज ने ऐलान कर दिया है कि उसे इलाके से एक बड़ा मिसाइल से ड्रोन हमला हुआ है। बार बार ऐलान किया गया है कि फौज अजय तक इस हमले बारे कोई नुकसान या निशाना बनाए गए क्षेत्र बारे कोई जानकारी साझा नहीं की गई। पर इलाके बीच हमले में देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। देश के कई इलाकों में सायरन बजे लोगों को सुचेत रहने की अपील की
0: गई।
1: उधर छत्तीसगढ़ भयानक गर्मी ने जंगली जीवों के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है, जिस कारण हुआ तक 700 चमगिदड़ा और जानवरों की मौत हो चुकी है। सुबह वाला तापमान जंगली जीवों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, जिस माहिरा वालों इकोलॉजिकल एमरजेंसी करार दिया गया। रिपोर्ट अनुसार वक्त वक्त जिले में 500 तो वध चमगिदड़ा की मौत हो चुकी है। कांकेर जिले के सरूना इलाके में पिछले कुछ दिनों तो चमगिदड़ दरख्तों तो डिग के मार रहे ने। इसी तरह कोरबा जिले में भी लगभग 200 चमगिदड़ मरे हुए हैं। माहिरां का कहना है कि चमगिदड़ गर्म खून वाले जीव होने कारण तापमान में होने वाले बदलाव प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और गर्मी कारण होने वाले तनाव को सहन नहीं कर पा रहे। उधर विश्व सेहत संगठन वालों अफ्रीकी देशों में फैले इबोला वायरस को लेकर जारी किए गए ग्लोबल अलर्ट तो बाद भारत सरकार पूरी तरह के मुस्तैद हो गई है। हाल ही अहमदाबाद और बेंगलुरू में अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री वाले दो शकी मरीज सामने आने बाद केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने देश के सारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी और स्क्रीनिंग के नियम बेहद सख्त कर दिए ने। केंद्रीय सेहत सकत्र वालों जारी ताजा दिशा निर्देशों मुताबिक दिल्ली मुंबई बेंगलुरू और अहमदाबाद समेत सारे मुख हवाई अड्डे अफ्रीकी देशों तो आने वाले हर यात्री लई अपनी सेहत की जानकारी देना लाजमी कर दिया गया। हवाई अड्डे विशेष थर्मल कैमरे लगाए गए हैं ताजो तेज बुखार वाले यात्रियों की तुरंत पछाण की जा सके। जेकर किसी यात्री में बुखार सिरदर्द या उल्टी वर्गे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्होंने हवाई अड्डे ते ही बने आइसोलेशन बे विच ले जाके तुरंत सरकारी अस्पतालों विच क्वारंटीन किया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी वालों सुनील जाखड़ का कार्यकाल पूरा होने ते केवल सिंह ढिल्लों नूं नवा पंजाब प्रधान थाप दिता गया। इस मगरों हुण सुनील जाखड़ का पहला बयान सामने आया है। उन्हां आख्या है कि उन्हां लई पंजाब दे लोकां ते संगठन नाल रिश्ता हमेशा किसी भी अहुदे या जिम्मेवारी तो काफी उपर रहा है अते इह नाता अजे भी उसे प्यार वचनबद्धता ते समर्पण नाल जारी रहेगा। इस दे नाल ही उन्हां ने केवल सिंह ढिल्लों नूं भी नवीं जिम्मेवारी लई शुभकामनावां दित्तियां ने। सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब भाजपा दे प्रधान वजों सेवा करना उन्होंने बहुत वड्डे वाली माण और जिम्मेवारी की गल है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जताया गया विश्वास और गृह मंत्री अमित शाह तो लगातार मिलिया मार्गदर्शन इस पूरे सफर दौरान उन्होंने ताकत का स्थाई स्रोत रहा है। उन्होंने यह भी आख्या है कि बीएल संतोष तो प्राप्त संगठनात्मक सिक्ख्या दिशा निर्देशों ही जगत प्रकाश नड्डा मौजूदा राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन जी का उत्साह सहयोग उन्होंने सदा ही बहुत कीमती रहेगा। उधर जम्मू कश्मीर अते देश लई बहुत माण वाली गल है कि भारतीय पैरा ताइक्वांडो एथलीट चंदीप सिंह ने मंगोलिया विच आयोजित 11वीं एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप विच 80 किलोग्राम तो वध वर्ग विच सोन तगमा जीतिया है। इतिहासिक प्राप्ति जम्मू कश्मीर लई एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप विच पहला सोन तगमा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय खेडां विच केंद्र शासित प्रदेश लई एक इतिहासिक पल है। एशिया भर दे छोटी दे पैरा एथलीट दे खिलाफ मुकाबला करदे होए चंदीप सिंह ने हैवी वेट श्रेणी विच सिखरला सम्मान हासिल करन लई एक शक्तिशाली अते अनुशासित प्रदर्शन कीता। उधर अमरीकी फौज ने दस्या है कि ईरान वालों बुधवार देर रात कुवैत मिसाइलां दागियां गईयां, जिसनों कुवैत वालों सफलतापूर्वक रोक दिता गया। अमरीका ने अपने प्रमुख खाड़ी सहयोगी ते होए इस हमले नूं पिछले महीने हुई नाजुक जंगबंदी की एक गंभीर उलंघना दस्या है। घटना अमरीका ते ईरान दरम्यान चल रहे तनाव तो होर वध सकती है। यह मामला उदों सामने आया जदों हफ्ते के शुरू विच अमरीका ने ईरानी मिसाइलां लांच साइट माइन विछाउण वालियां किश्तियां ते ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਨਪਛਾ ਤੇ ਖਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਾਇਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 8800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰਬਤ ਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਬਤਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ -20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਿਹੇ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੋਸਟਬਾਈਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰ 20 ਪੌਂਡ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਬਤਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬੂ ਆਈਸਫਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਰਬਤਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ 24 ਤੋਂ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ bisoni 107.1 FM। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नु दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोवेनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqi.
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.
0: Apne khali dabbya botlaan to kamai karo. Tuhaade har ek yo khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu asi bin coin kende haan. ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

0: best point. They understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. Commercial matter ho, jaise lease ka mamla, business ho, ya phir gharon ki buying selling ka mamla. और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
2: अरे वाह इनका पता बताना
3: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5-1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ On 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.
4: आज

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
11: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
10: ऐसा क्या खास है वहाँ?
11: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
10: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
11: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
12: Yeah, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज.

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक Under the Stars, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਖਰਚ ਕਰੇ ਯਾ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਮੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹੀਂ ਏਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
4: ਸਮ ਨੰਬਰਸ ਕੈਰੀ ਵੇਟ ਬਿਯੋਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ। Q11700, ਦ ਮਾਸਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਅ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਪਲੇਟ, ਫਰਸਟ ਇਸ਼ੂਡ ਇਨ 1922, ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਵੈਨੈਂਸ, ਓਨਡ ਆਊਟਰਾਈਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੈਡੀ। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqi.
6: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
7: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
8: Tune Ohms Org Assisted Living ke baare mein suna hai? Gurugram mein hai. Professional senior living, 24/7 nursing aur doctors ke strong tie-ups ke saath. Fortis, Medanta, CK Birla, Artemis, sab acche hospitals paas hi hain.
7: Seriously? Matlab proper care aur mujhe yahan bhi peace of mind?
8: Bilkul. Ohms Org Assisted Living, Australian-owned senior living in Gurugram, India. Australian standards ki professionalism, experienced team aur trusted alternative to unorganized, unreliable home helpers. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ, डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
9: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
10: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
9: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
10: अरे ओम सॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
9: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
10: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
9: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
10: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी अनुज जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनास बने हुए। अगला नाम है जी राही बदल गए थे। फिल्म रिलीज हुई सी 1985 दे विच। रवि टंडन दे डायरेक्शन विच बनी राही बदल गए ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है, जिसनु रिलीज होण ते पहचान नहीं मिली, जिसदे बाद विच ओ हकदार सी उदो। इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गे जानिया मानिया एक्ट्रेसेस दे नाल डबल रोल किया है। फिल्म की कहानी गलतफहमिया प्यार और परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारां दे इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बुनी हुई है। आरजी बर्मन का म्यूजिक इसकी सब तो वड्डी यूएसपी सी। 1980 दे दहाके जद स्क्रीन ते एक्शन ते बेरहम विलन आम गल सी, इस शांत ते प्यारी लव स्टोरी नू थिएटर ते आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समय विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम ते मधुर म्यूजिक वालियां फिल्मां लभदे हैगे ने, तां यूट्यूब ते ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज ते तारीफ साबित करदी है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई नाल जुड़ा महसूस किया है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

पूरे करियर विच एक शानदार एक्टर सी पर एक डायरेक्टर दे तौर ते उन्होंने 1999 ऐश्वर्या राय ते अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म आब लौट चले बनाई जो उन्हां दे दिल दे बहुत करीब सी। ए फिल्म विदेश विच रहण वाले भारतीयां दे अपने कल्चर अते उन्हां दे स्ट्रगल अते अपने मुल्क वापसी दी एक खूबसूरत अते इमोशनल कहानी सी। रिलीज होण ते फिल्म दी स्लो अते सीरियस कहानी दर्शकां नूं पसंद नहीं आई जिसका नतीजा ए रहा कि ए बॉक्स ऑफिस ते बुरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई। हालांकि अज दे दौर विच जद लोक फैमिली वैल्यू जोर देने वाला अपनी जड़ा दे वाल लौटन वाला सिनेमा पसंद कर रहे ने ऋषि कपूर दा इकलौता डायरेक्ट एडवेंचर अपनी सीरियसनेस अते मेलोडियस म्यूजिक दे नाल एक मास्टरपीस दे तौर ते याद किया जाता है।

में और थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मॉर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110 ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है Fiji style barbecue, spicy duck curry, yummy pulao aur thandi thandi Fiji ice block. To in dates par ghar pe mat baithna. Family friends ke saath aa jana Qbong Soccer Tournament 2026 mein. Zyada jankari ke liye call karein Abdul Rahim 0423-342-272 ya phir secretary Ray Ali 0413-868-240 aur visit karo briswani.com ke events section mein. Qbong 2026 आपका इंतजार रहेगा

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: अनु।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan
11: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
0: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन AU.LotusFX.com ऐप आज ही विजिट करें।

प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: OMSOG, caring with dignity.
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है।

असर तो मैं चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

गेट रेडी ब्रिस्बेन। आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ सुष्टि कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

0: मित्रों, रेडियो ब्रिजबैन की घड़ी में ठीक 6:30 बज चुके हैं और रवि से लेकर ठीक 8:30 बजे तक आप मेरा साथ रहेगा। आज का मंगल प्रभात आपको शुभ तथा मंगलमय हो। शनिवार 30 मई 2026 है। सुबह का बेला है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है। और चलें आगे बढ़ते हुए, मौसमी दफ्तर ब्रिजबैन ने जो हमें मौसमी खबर प्रदान किए हैं उसके अनुसार ब्रिजबैन, इप्सविच, सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट में धूप निकलेगी। आज 22 डिग्री रहेगा ब्रिजबैन में दिन में, रात्रि को 13। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है और 6:29 पर सूर्य उदय हुआ है और 5:03 पर सूर्य अस्त होगा। इप्सविच में 22 रहेगा दिन में, रात्रि को 8। हवा की रफ्तार 18। सनशाइन कोस्ट में 22 दिन में, रात्रि को 13। हवा की रफ्तार 16 और गोल्ड कोस्ट में 23 दिन में, रात्रि को 12। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा। फिजी द्वीप ले चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेडी, और नेडी में बारिश हल्की हो रही है। 28 दिन में, रात्रि को 24। हवा की रफ्तार 6 और 6:33 सनराइज और 5:42 सनसेट। तो ये तो हो चुका, 2 घंटे आगे हमसे। फिर लंबासा ले चलते हैं जहां पर समय समय पर आपको धूप दिखाई देगी और अन्यथा आकाश पर घटा छाए रहेगी। 27 दिन में, रात्रि को 23। हवा की रफ्तार 19 और सुबह में हल्की बारिश होगी। 27 दिन में, रात्रि को 24। हवा की रफ्तार 21। ओकलैंड में इसी प्रकार का मौसम है। 7:22 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:13 पर सूर्य अस्त होगा और हल्की बारिश के साथ साथ 17 दिन में, रात्रि को 11। हवा की रफ्तार 23 और वेलिंगटन में धूप समय समय से निकलेगी। 13 दिन में, रात्रि को 9। हवा की रफ्तार 26। भारत द्वीप ले चलते हैं मुंबई में, जहां पर समय समय पर आकाश पर घटा छाई दिखाई देगी अन्यथा धूप निकलेगी। 34 मैक्सिमम, 31 मिनिमम, 19 विंड स्पीड। अमृतसर में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी। 34 मैक्सिमम, 24 मिनिमम, 19 अगेन विंड स्पीड। और नई दिल्ली में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 34 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 18 विंड स्पीड। 5:24 पर सूर्य उदय होगा और 7:12 पर सूर्य अस्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 0411-127-035 मेरा नंबर है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें आपको ले चलते हैं कुछ म्यूजिक के तरफ। और आज मैंने सोचा क्योंकि शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, तो शरद शर्मा जी से एक बहुत ही प्यारा सुर जो प्रदान किए हैं वो हनुमान जी पर है आधारित, वही सुनाएंगे। अमला जी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, और शुरू कर रहे हैं सुबह का बेला में ए मधुर गीत। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इनमें बहुत सारी बातें बंद हैं और जो लोग हमारे धर्म पुस्तक पढ़ते हैं तो उनको कुछ अंदाजा लग गया होगा किस प्रकार का गीत परमानंद बजाने जा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं गीत के साथ। स्वागत है आपका रेडियो ब्रिजबानी पर एक बार फिर। अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल वेदर इन साउथ ईस्ट क्वींसलैंड।
1: भक्ति का ये वर्णन किया गया है, एक सच्चा भक्त हनुमान जी के चरणों में कह रहा है

0: प्रिय मित्रों, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, बहुत ही खूबसूरत सा भजन था। मेरे हाथ लगा तो मैंने सोचा चलो भाई मैं क्यों ना आपको भी सुना दूं ये खूबसूरत भजन। और इसी के साथ ही रेडियो ब्रिज बानी घड़ी में लगभग 22 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। जो लोग अभी भी प्रोग्राम को सुनना शुरू किए हैं, आपका मैं परमानंद हृदय से स्वागत कर रहा हूँ शनिवार की सुबह खूबसूरत मौसम के साथ। और समय कैसे तेजी से भाग रहा है, अंदाजा भी नहीं लग रहा कि महीना शुरू हुआ खत्म होने वाला है और फिर फाइनेंशियल ईयर नजदीक आ रही है। तो चलो आगे बढ़ते हुए एक बार फिर स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035।
1: Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
0: जी मित्रों, और हमारा प्रसारण 1700 AM के माध्यम से 7 in Mile Rocks ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। शनिवार का दिन है, प्यारा सा दिन है, धूप निकली हुई है और ठंड तो है वैसे 15 डिग्री इस समय तापमान है यहाँ पर, और बढ़कर जैसे मैंने कहा 22-23 हो जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इस बार एक डिवट है, उदित साहब है अलका जी के साथ।
11: वर्मा, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं।
12: कांग्रेचुलेशंस रोहन वर्मा, तुम्हें बॉम्बे में चीफ सर्जन का पोस्ट, बंगला, गाड़ी और एक गोल्ड मेडल मिला है। बोलो क्या ख्याल है?

0: जी मित्रों, बहुत आपके साथ में घड़ी की तरफ देख रहा हूं। इस समय 7:15 हैं और खूबसूरत मौसम के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें विज्ञापन की तरफ और कुछ विज्ञापन भी बजाता चलूं मैं। तो चलें पहला विज्ञापन अभी एक गीत के बाद जो बजा रहा हूं अब आपके लिए पेश है।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार, सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: मित्रों, फिल्म राजा बाबू का बहुत ही लोकप्रिय गीत है, मैं जानता
4: हूं। भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: जी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो विंटर चल रहा है, शुरू होगा कल से, और यहाँ पर ठंड ज्यादा है। तो ऐसे में गीत बना है ना कुमार सानू जी, पूर्णिमा जी के साथ जो अदा करने वाले हैं। ये फिल्म राजीव बाबू का बहुत ही लोकप्रिय दो गाना है, जो कहते हैं कि भाई सरकार लो खटिया ज्यारा लगे।

0: जयमित्र सरकार लो खटिया इजारा लगे, बहुत बढ़िया सा गीत था। मेरे ख्याल से एक और खबर ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक और गीत। तो चलो एक खबर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: जय मित्रों, 7 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, और आगे बढ़ते हुए एक और दो गाना है। थोड़ा फास्ट बीट कॉमेडियन टाइप गाना है। कुमार सानू जी आ रहे हैं इस बार अलका याग्निक जी के साथ।

0: Piano kau tu lagi ya? Piano. जय मित्रो, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और चलें एक विज्ञापन सुनते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू पेश करता हूं ये विज्ञापन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: जय मित्रों, रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में 7 बज रहे हैं और एक स्थानीय सामाजिक सूचना है। आपको याद दिला दें कि जो क्वींसलैंड बैटल ऑफ जायंट्स का दंगल होने को जा रहा था 31 यानी कल से आकाशीय पर, उसे खराब मौसम के कारण स्थगित किया जा रहा है और अब ये 4 तारीख जून से रविवार 7 तारीख जून तक किया जाएगा। तो एक बार याद रहे, जो क्वींसलैंड बैटल ऑफ द जायंट्स का टूर्नामेंट होने जा रहा था कल से, इसे स्थगित किया गया है। अब यह दंगल होगा 4 तारीख जून से लेकर 7 तारीख जून तक, और इसे इस कारण स्थगित किया गया है क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, तो इसीलिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलें एक बार फिर हम मौसम के खबर की तरफ। तो साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में धूप निकलेगी और दिन का तापमान 22 से लेकर 23 डिग्री रहेगा और रात्रि का 8 से लेकर 13, हवा की रफ्तार 16 से लेकर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ स्थानीय हमारे मौसम के खबर थे और आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं पुराने गीतों के दुनिया में। पुराने गीतों के दुनिया में आप चलें अरिफ जी के आवाज में। वैसे तो ये गीत मुकेश जी गाते हैं, लेकिन अरिफ जी के आवाज में हम इसे बजाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना, मेरे साथ भी बहुत बार बीता है जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ। जब कभी मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे कहीं और जाना है, गाड़ी खुद मुड़ जाती है, कहाँ वहाँ जहाँ मुझे जाना नहीं था, लेकिन मुझे खुद लेकर जाती है। तो फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ थोड़े देर के लिए, फिर वहाँ से वापस आते हैं, बोलते कहाँ आ गए यार, जाना कहीं और था, गाड़ी मुड़ गई कहीं और। तो चलो ये रोमांटिक एंगल से देखते हैं,

जी मित्रों, महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास है मेरे मकसूद, क्या बात है। पुराने यादों को ताज़ा किया इस गीत ने, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं भाई। एक बहुत खूबसूरत सा गीत और आया है, महमूद जी और शोभा खोटे जी पर्दे पर हैं, फिल्म का नाम है ससुराल, 1961 का सुपरहिट मूवी। मुकेश जी की मधुर आवाज में आपको सुनाएंगे हम। और शशि जी, आप अपने पति देव के साथ, जेम्स के साथ प्रोग्राम को सुन रही हैं। और जेम्स भाई, आप तो बड़े अच्छे कलाकार हैं, हमारे ब्रिस्बेन में निवास करते हैं और मुकेश जी का गाने अक्सर आप गाते हैं, तो चलो मेरे तरफ से ये गाना।

जी मित्रों, जाना तुम्हारे प्यार में क्या क्या मैं बन गया हूँ। मुकेश जी सुना रहे थे बहुत ही लोकप्रिय गीत आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ गीत अच्छा लगा। क्या शब्द यूज किए, निकम्मा और काम से बर्बाद हो गया हूँ, ये सब गाना प्यार में आता है, प्यार में किए थे, अच्छा लगा मेरे को। उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। चले एक खबर ले लेते हैं, खबर के बाद हम फिर आएंगे, कुछ खास सुनाना है आपको आज।

0: सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174।
1: जय मित्रों, यही बतलाना था जो ए दंगल आज होना था, कल होना था, इसे स्थगित किया गया है और ये 4 जून से शुरू होगा। तो याद रहे, ये जो दंगल कल से होना था सोका का आकाशिया रिज में, वो स्थगित किया गया है 4 जून तक। तो तैयार होकर रहना मत, और कहीं घूमने फिरने जाना तो जाइए, लेकिन सोका दंगल नहीं होगा, मौसम बुरा होने के कारण इसलिए ऐसा हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और खबर सुनाते हैं, खबर के बाद कुछ और आपको सुनाना है, तैयार करके रखा हूं। तो चलो पहले एक खबर सुन लेते हैं।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: जय मित्रों, ये प्रोग्राम हम लेकर आएंगे आपके लिए 8 से 8:30 के बीच। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब भी आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि कैसे समय के साथ साथ हमारे जीवन में तकनीकी जो टूल्स इस्टेब्लिश हुए हैं या हथियार उपस्थित हुए हैं, उसके कारण कितना आगे बढ़ गए इंसान और कितना दूर हम चले गए हैं। जो वार्तालाप, प्यार बात हम करते थे बगैर फोन वगैरह का, अब वो हम कैसे कर रहे हैं, चलें, इसको हम लेकर आए हैं डॉक्टर कैलाश द्विवेदी जी के साथ, सुनते हैं। इसके बाद हम राव जी को लेकर आएंगे।
3: तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, सुनकर आंखें पहुंचने वाली, दिवाली की 5 की कहानी जानने वाली, लिविंग तो छोड़िए, लव मैरिज भी बहुत बड़ा डेयरिंग समझने वाली, स्कूल कॉलेज में लड़कियों से बात करने वाले लड़के भी एडवांस कहलाते थे, फिर से आंखें मूंदे तो वो 10, 20, 80, 90 वाली वही सुनहरी यादें। गुजरे दिन तो नहीं आते, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। और ये समझने वाली समझदार पीढ़ी थी कि आज के दिन भी कल की सुनहरी यादें बनेंगे। हमारा भी एक जमाना था, तब प्ले स्कूल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 6-7 पूरे होने के बाद ही सीधे स्कूल भेजा जाता था। अगर स्कूल ना भी जाएं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, न साइकिल से न बस से भेजने का रिवाज था। बच्चे अकेले स्कूल जाएं, कुछ अनहोनी होगी, ऐसा डर माता पिता को कभी नहीं हुआ। पास फेल यही सब चलता था, कोई प्रतिशत से कोई भी वास्ता नहीं था। ट्यूशन लगाना शर्मनाक माना जाता था, क्योंकि ये ढीठ कहलाता था। किताब में पत्तियां और मोर पंख रखकर पढ़ाई में तेज हो जाएंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े की थैली में किताबें रखना, बाद में टीन के बक्से में किताबें सजाना, ये हमारी क्रिएटिव स्किल था। हर साल नई कक्षा के लिए किताब कॉपी पर कवर चढ़ाना, ये तो मानो वार्षिक उत्सव होता था। साल के अंत में पुरानी किताबें बेचना और नई खरीदना, हमें इसमें कभी शर्म नहीं आई। दोस्त की साइकिल की डंडे पर एक बैठता, कैरियर पर दूसरा, और सड़क सड़क घूमना, यही हमारी मस्ती थी। स्कूल में सर से पिटाई खाना, पैरों के अंगूठे पकड़कर खड़ा होना, कान मरोड़कर लाल कर देना, फिर भी हमारा ईगो आगे नहीं आता था। असल में हमें ईगो का मतलब ही नहीं पता था। मार खाना तो रोजमर्रा का हिस्सा था। मारने वाला और खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। खाने वाला इसलिए कि चलो आज कल से कम पड़ा, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर मौका मिला। नंगे पांव लकड़ी की बैट और किसी भी बॉल से गली गली क्रिकेट खेलना, वही असली सुख था। हमने कभी पॉकेट मनी नहीं मांगा और न माता पिता ने दिया। हमारी जरूरतें बहुत छोटी थी जो परिवार पूरा कर देता था। दिवाली में लवंगी फुलझड़ी की लड़ी खोलकर एक एक पटाखा फोड़ना हमें बिल्कुल भी छोटा नहीं लगता था। कोई और पटाखे फोड़ रहा हो तो उसके पीछे पीछे भागना, यही हमारी मौज थी। हमने कभी अपने माता पिता से यह नहीं कहा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आज हम जीवन में संघर्ष करते हुए दुनिया का हिस्सा बने हैं। कुछ ने वो पाया जो चाहा था और कुछ अब भी सोचते हैं, क्या पता स्कूल के बाहर हाफ पैंट वाले गलियों के ठेले पर दोस्तों की मेहरबानी से जो मिलता वो कहाँ चला गया। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन सच ये है कि हमने हकीकत में जिया और हकीकत में बड़े हुए। कपड़ों में सिलवटें ना आए, रिश्तों में औपचारिकता रहे, ये हमें कभी नहीं आया। हमने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। आज भी हम सपनों में जीते हैं, शायद वही सपने हमें जीने की ताकत देते हैं। हमारा जीवन वर्तमान से कभी तुलना नहीं कर सकता, हम अच्छे हों या बुरे, लेकिन हमारा भी एक जमाना था।
1: तो मित्रों, वाक्य मेरे सामने आ गया, मैंने सोचा चलो भाई आपको भी सुना देता हूं। तो देखिए 1980 से लेकर अभी तक का ये था, वो कैसे तुलना किए। और सही बात है, मेरे ऊपर तो बीता है भाई। पाठशाला जाते थे उस समय तो नहीं, उससे पहले से नंगे पांव ही जाते थे, ग्रेबल रास्ते में जाते थे और बगैर जूते के, और फिर दौड़ते। मैं हमेशा आई टू रन, घर से दौड़ कर सेंट अगस्टिन गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, लंबा सा का बात है, और फिर दौड़कर मैं घर आता था। जैसे इमेजिन उतना डिस्टेंस। आजकल अगर बोलोगे बच्चों को तो बोले नहीं भाई मुझे बस में जाना है या गाड़ी में बिठा दो। तो ये बातें, और फिर मोबाइल फोन वगैरह नहीं होता था, ये मैं सोचा चलो आपको सुना दूं और फ्लैशबैक हो जाएगा आपके लिए कि आपके जीवन कैसा था उस समय, कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत किए और आज क्या कर रहे हो। तो चलो हम एक खबर लेते हैं, फिर हम राव जी को लेकर आते हैं। और आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम प्रोग्राम को सुन रहे हैं। रे इलेक्ट्रिकल का एक खबर आपको हम सुनवाते हैं, फिर मित्रों हम आगे बढ़ते हैं।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: मित्रों, रेडियो ब्रिजबानी पर आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम संगीत सरगम नामक प्रोग्राम, जिसको हर शनिवार को 6:30 से 8:30 के बीच मैं लेकर आता हूं, और हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं राव जी। तो राव जी हमारे साथ हो चुके हैं। नमस्कार राव जी, स्वागत है रेडियो ब्रिजबानी पर।
2: नमस्कार। नमस्कार परमानंद जी। ऐसी जो चुटकुला होती है तो प्रोग्राम का जो रस है वो सुहाना हो जाता है। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया कि कहां से खोज करके लाए थे ऐसे ऐसी वार्ता, तो प्रोग्राम का रुख जो है वो बदल जाता है। आज मैंने मन का जागरण लाया हूं
1: जी।
2: रात बीतती है, सूरज उगने को होता है और आदमी जाग जाता है। सोने के बाद जागना या निश्चित क्रम है। हमेशा आदमी या कोई भी जीव जब समय आ जाता है तो वो जाता है सोने के लिए। कोई आदमी 24 घंटा तक नहीं सोता। जो 24 घंटा सोया रहता है वह मूर्छित माना जाता है। शरीर लंबे समय तक सोया नहीं रह सकता। चेतना लंबे समय तक सोई रह जाती है, वह मूर्छा में रहती है। ध्यान

0: होता है, चेतना सोई हुई है, मन सोया हुआ है। जब इच्छा और मन की चंचलता जीवन का संचालन करती है तब महानता प्रकट नहीं हो पाती। इन्हीं व्यक्तियों में महानता प्रकट हुई है जिनके जीवन की लगाम इच्छा के हाथ में नहीं थी। मन की चंचलता से जीवन संचालित नहीं था। जब सुप्त चेतना जागती है तब इच्छा और मन पर नियंत्रण होता है। जब इच्छा और मन पर अनुशासन होता है तब सुप्त चेतना जागती है। हमारी चेतना शरीर में बंदी बनी हुई है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा सचेतन मन को शांत करो और अचेतन मन को जागृत करो, शक्तियां बढ़ेगी। जब इस तथ्य पर दार्शनिक दृष्टि से सोचते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह सही है पर अपूर्ण है। इसमें कुछ परिष्कार अपेक्षित है। अचेतन मन के जागरण की बात कही गई है तो यह अचेतन मन में भद्दापन, क्रूरता, हिंसा और घृणा नहीं है। सारे आवेगों का अड्डा है अचेतन मन। सारे बुरे भाव अचेतन मन से सचेतन मन में संक्रांत होते हैं। हमें अचेतन मन को दो भागों में बांटना होगा। एक वह अचेतन मन जिसका रूप भद्दा और एक वह अचेतन मन जो सुंदर है, सरस और मधुर है। एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। हम अचेतन मन के शुक्ल पक्ष वाले भाग को जगाएंगे, कृष्ण पक्ष वाले भाग को सोया रहने देते हैं। तो ऐसी मन का जागरण पर एक सुंदर विचार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको। मिलते हैं शनिवार को, ख्याल रखिएगा, ठंड का मौसम है।
0: एक हफ्ता कैसे चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है।
1: मुझे भी तो नहीं मालूम पड़ता कि कब आया शनिवार और कब आ गया घूम कर फिर से शनिवार।
0: हाँ जी,
1: तो चलो बड़ा अच्छा लगा। और अपना आंटी जी को भी मेरा राम राम या नमस्कार कहना। अच्छा जी, धन्यवाद। तो मित्रों ये थे राव जी और अपनी वाणी सुनाए। और इसके साथ साथ हमारे और श्रोतागण प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। तो हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हुए एक खबर है वो ले लेते हैं। खबर के बाद फिर हम आपको ले चलेंगे। दो तीन पुराने गाने और हैं, मुझे बनाना बजाना जरूरी है क्योंकि कुछ एक पैटर्न बता रहे हैं।
2: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: अब प्रिय श्रोतागण 28 मिनट हुए हैं 7:00 परमानंद के साथ आप संगीत सरगम प्रोग्राम को सुन रहे हैं। देखिए मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से बातें करता हूँ रेडियो पर, बाहर शादी ब्याह कराने के साथ साथ। तो एक कुछ याद आ गया।

एक ऐसे वाकया कि एक रेस्टोरेंट में मैं गया तो वहां पर हमारे बहुत पंजाबी बच्चे थे और वो बोलते अंकल जी आ गए, अंकल जी कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ। तो मैंने बोला यार क्या सुनाऊ मैं, मैंने बोला आप मुझे मालूम है आप लोगों का रिश्ता किसी के साथ है या होने वाला है और आप सोच रहे हैं कैसे होगा। बोलते अंकल जी यही तो रुकावट है, मान नहीं रही है। तो मैंने बोला भाई जब नहीं मान रही है तो गीत के सहारा लीजिए, एक हिंदी गाना है बहुत पुराना, तो वो गाना अब मैं बजाने जा रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, उनकी ब्याह हो गई बस। मैंने बोला यही सुना देना है, वैसे तो लता जी अदा कर रही हैं लेकिन तुम अपने सुर में थोड़ा सा सुना देना, काम बन जाएगा।

मित्रों कैसे लगा गीत? तो ये था ऐसे किसी का रिश्ता बन जाए, यही खुशी की बात है। बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और एंटैया भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने वो जो मैंने पेश किया था वाकिया उसको सुने और बहुत खुश हुए कि बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसे कुछ बातें होती हैं, कहानियाँ होती हैं जीवन में, जब पुराने बातें वो ताज़ा हो जाते हैं हमारे। तो ये था एक खुशी खुशी का गीत जो मैंने बजाया आपके लिए। और मित्रों आप रेडियो ब्रिजवानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बतला दूं और याद कर लूं उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है। आपका जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है बहुत बहुत खुश नसीब आप हैं कि आपका रिश्ता अच्छी तरह से चल रहा है। इसको ऐसे बरकरार रखिएगा और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जिनके अब जो अगला गीत है ये कुछ चून अलग चला गया, ये जो अगला गीत है लता जी का गाया हुआ इन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज पगला कहीं का। पूछोगे परमानंद जी क्यों पगला कहीं का तुम्हारा फेवरेट मूवी है? इसलिए फेवरेट रहे क्योंकि माई मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेस कोई और नहीं आशा पारेख जी मुख्य भूमिका में थी, पर्दे पर शमी कपूर साहब थे। आज भी याद है उनके एक डायलॉग की, मुझे ऐसी जगह शमी कपूर साहब बोलते हैं, आशा जी से बोलते हैं, आशा जी पूछ रहे हैं पिक्चर में कि कहाँ जाना है तुम्हें, शमी कपूर साहब बोलते हैं मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कछुए हो बड़े बड़े छोटे छोटे। तो उसी फिल्म का एक गाना तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। अनु अमला जी यू लाइक दिस सॉन्ग यू सिंग एस वेल, और इसके साथ साथ बहुत हमारे लोग हैं जो एक गीतों को ऐसे पसंद करते हैं। आप सबको इसी में शामिल करके मैं आगे बढ़ता हूं।

जी मित्रों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, एक लता जी अदा की थी और कई कॉल्स हैं इस पर। वेंकटैया भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, हमारा प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल ये सब याद आ गए आपके बातों से, और खेती बाड़ी का किसे हम काम वगैरह करते थे। शैली पांडे जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, थैंक यू सो मच, आप काम से घर जा रही थी, आपको भी बहुत पसंद आया गाना। अमला जी आपने भी पसंद किया कि क्या कमाल के लिरिक्स हैं। और हमारे मित्र अशोक हरगोविंद जी थैंक यू सो मच, आप बोल रहे थे जतीश भाई रफी जी का वर्जन बजाते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपने लता जी का वर्जन बजाया, क्या लिरिक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लगा। तो चलो आपको भी धन्यवाद है और जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब बैठते ना कुछ ऐसे ऐसे यादें हैं जो ताजा हो जाती हैं, और जब ताजा हो जाती है ना बचपना बहुत ही याद आता है, रुलाता भी है बहुत बहुत रुलाता है और सताता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या करें, जीवन है ना। बहुत गाने याद आ रहे हैं, जीवन है, इस जीवन का यही यही रंग रूप, थोड़े गमे थोड़ी खुशियां थोड़ी छांव धूप, तो इसको यही छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब जब ये सब करते करते हम भाई किसी को अपना दिल का हाल बतला देते हैं तो आगे क्या करेंगे, तो तरस खाकर वो व्यक्ति जरूर आपसे मिलेंगे, तो फिर आगे किशोरदा लता जी क्या कहती हैं।

0: जी मित्रों, इस गीत के साथ साथ 14 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और याद रहे 8 से लेकर 8:15 के बीच हम रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके लिए लेकर आएंगे और पेश करेंगे। चलें एक खबर के।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: और हम आगे बढ़ते हैं चलें, कुछ आइटम सॉन्ग्स हो जाएं। मैं मस्त कुड़ी, तू भी मस्त, मस्त मुंडा है।

या मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है, आप सुन रहे थे। और इस सेगमेंट में दो और गीत मुझे बजाना है और बजाते हैं। चलो, यूपी वाला थुमका सुनो निगम जी।

0: जय मित्रों, हीरो नंबर वन का बहुत ही लोकप्रिय गीत अभी आप सुन रहे थे, और गीत के साथ साथ एक और गीत का समय है रानी क्रिएशंस प्रोग्राम से पहले, तो चलो उसे बजा देते हैं। इसको आपके लिए सपना अवस्थी जी अदा कर रही हैं और साथ में हैं चेतन साहब। बहुत प्यारा सा गीत है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग से, वे मुझे बेहद पसंद है। और सोचोगे कौन सा गीत है भाई, शूल फिल्म का वही गीत, मैं आई हूँ यूपी बिहार लेकर। देखिए समय समय के साथ क्या क्या होता है ना, याद आते हैं वही कि बहुत रिश्तेदारों को हम खो चुके हैं और दोस्तों को सुख खो चुके हैं। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया है, क्या है, बस खुश रहना है।
1: हाय, हाय, हाय, हाय, हाय, हाय। नागिन से बल खा के।
2: हाय, हाय, हाय, हाय।

0: जी मित्रों, इस गीत के साथ साथ 8:15 हुए हैं और आप अब समय हुआ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया का। तो चलो पहले विज्ञापन बजाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Ja mitro, Rani Creations ke saptahik karyakram mein aapka tahe dil se swagat hai. Namaskar, sat sri akal, aur salam, hum wait kar rahe hain. Bhai, bahut khoobsurat sa mausam hai, aise pyare mausam mein shopping karne ka to din banta hai na. और आप रानी क्रिएशंस शॉप में आएंगे तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है और बहुत घटाए हुए दामों पर दुकान में जो है वो माल बिक रहे हैं। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो $16 ईच सेट से क्लियर हो रहे हैं, $16 ओनली। और अनारकली सूट्स फ्रॉम $100, साड़ीज फ्रॉम $35। तो देखिए, और मर्दों के कपड़ों पर विशेष छूट आपको मिलेगा और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सेसरीज हैं जो आप शॉप में आकर देख सकते हैं। तो याद रहे, ज्वेलरी फ्रॉम $16 सेट, अनारकली सूट्स फ्रॉम $100 सेट, साड़ीज फ्रॉम $35 ईच। तो ये सेल लगा हुआ है रानी क्रिएशंस में, सप्ताह के सातों दिन खुलते हैं, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आज खुली रहेगी दुकान और रविवार को 10 से लेकर 3 बजे तक। तो अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अभी तक रानी क्रिएशंस शॉप में नहीं गए हैं, तो आपके पास दो काम कर सकते हैं। एक, खुद आ सकते हैं, फिर अपने यार दोस्तों को बतलाएं कि भाई चलें रानी क्रिएशंस, वहां बड़ी सेल लगी हुई है और पैसा का बहुत बड़ा बचत होगा। वहां आंखों से देखेंगे तभी खरीदेंगे ना, अच्छा लगेगा फिर पहनोगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही, और एक लोकप्रिय गीत है और इस गीत को आपके लिए हम बजा रहे हैं। मुश्किल है रिश्ते में ये गाने ऐसे आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और है मतलब।

जय मित्रों, विशाल और सचिन जिगर जी के साथ आप ये लोकप्रिय गीत को सुन रहे थे और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और फैशन की दुनिया प्रोग्राम में अगला गीत एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बजाते हैं। मेरा तो ऐसे सभी गाने फेवरेट हैं, लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान देता हूं और धुन पर भी, तो अच्छा लगता है। और याद रहे एक बार फिर रानी क्रिएशंस के बारे में जो जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है, ज्वेलरी गेटिंग क्लियर एट $16 अ सेट, अनारकली सूट्स गोइंग फ्रॉम $100 एंड सारीज नेटिंग सारीज सेलिंग फ्रॉम $35 ईच, तो ये आप आकर खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत और आइटम्स हैं जो आप देखकर खरीद सकेंगे और पैसा का बचत भी आपका होगा। और यहाँ पर जो भी माल आप खरीदेंगे तो आप देखकर आंखों के से खरीदेंगे, आपका पैसा का भी बचत होगा और साथ में कपड़े चुनकर रंग वगैरह देखकर आप खरीदेंगे ताकि आप उसे पहने और घर पर ले जाकर रख ना दें। तो चलो आगे मनप्रीत कौर के साथ, और उनके साथ परस भाई भी हैं, ये अदा कर रहे हैं बहुत ही लोकप्रिय गीत जिन्हें मोहम्मद दनिश साहब हैं, बहुत बढ़िया सा गीत अदा कर रहे हैं। चलो आपको सुनवाते हैं।

जो मित्रों बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद दनिश और साथियों का गाया हुआ आप सुन रहे थे, और परमानंद के साथ ये रानी क्रिशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम संगीत सरगम नामक कार्यक्रम है जो आप उसे सुन रहे हैं, और हम आगे बढ़ेंगे एक और गीत का समय। मगर उससे पहले आपको बतला दें कि रानी क्रिशंस में फाइनेंशियल या सेल चल रहा है, जहां पर ज्वेलरी जो है द सेट इज बीइंग क्लियर एट $16, अनारकली आपको सूट्स जो है वो $100 से क्लियर हो रहे हैं, नेटिंग सारीज आर गोइंग फ्रॉम $35 ईच। तो अगर आप अभी तक रानी कृष्ण शॉप में नहीं आए हैं तो शॉप कहाँ पर है ये पता आपको दे रहा हूँ, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट उलंगेवा में, और सप्ताह के सातों दिन खुले रहते हैं, सोमवार से शनिवार को सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक, और रविवार को 10 से लेकर शाम को 3 बजे तक। पार्किंग यहां पर अवेलेबल है, और फोन नंबर है 3391-0622 या फिर 0413-951-546। ऑनलाइन जाकर भी rannycreations.com पर आप देख सकते हैं कपड़ों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज का जो गीत है आखिरी इस प्रोग्राम का, उसके बोल हैं कि ब्याह करा दो जी, ब्याह करा दो जी, मीका सिंह और साथियों का गाया हुआ, सुनिए।

0: या मित्रों, इसी के साथ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया ही पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर एक और सेगमेंट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए याद रहे, रानी क्रिएशंस में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है और जहां पर बहुत ही घटाए दामों पर कपड़ों का बिक्री हो रही है और साथ में ज्वेलरी सजने सजाने के और आइटम्स सबके कपड़े यहां पर हैं। नए नए स्टॉक आए हैं मर्दों के, बच्चों के और औरतों के। यू कम इन हैव अ लुक, सेव मनी। अगले शनिवार तक आज्ञा दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Aur mitro, 8:30 baje se Nibya ji ke saath aap ho jayenge, wo top 10 lekar aayegi aur hum aage badhte hain. Kuch naye geeton ka samay aaya hai. Chand Mera Dil naya film hai jiska ek bahut hi lokpriya geet haath laga hai mera. खासियत गीत के बोल हैं, इसे अदा कर रहे हैं सचिन जिगर जी अपने साथियों के साथ। चलें इसे सुने, अच्छा लगेगा।

ये मित्रों नए गीत हैं कुछ जो आप सुन रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा। अब हम चलते हैं चांद देख लेना, इसे बजाते हैं आप।

मित्रों, कैसे लगा है गीत? नया गाना था, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। और एक और समय है, आज शादी वाला मूड है, इसे आपके लिए बजाना चाहता हूँ। चलें सुनते हैं इसे।

ये मित्रों समय नहीं है इजाजत देता और आगे बढ़ने का, तो इस गीत को ही छोड़ रहे हैं और 8:30 बजे से निविदा दी जाएंगी। इसी के साथ ही हम कार्यक्रम के आज के प्रोग्राम जो है उसके समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। ये लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड, गॉड ब्लेस यू। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसी हुई आपके वीकेंड की शुरुआत, क्या खुशियां मिजाज में है, क्या खुशियां हवाओं में है, क्या आपको सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है। वेल, मैं हमेशा कहती हूँ वीकेंड किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। बस फेस्टिवल और वीकेंड में इतना ही फर्क है कि फेस्टिवल बीच बीच में कभी कभार और साल में एक आध बार आते हैं, लेकिन वीकेंड हर हफ्ते के एंड में हमें सुकून देने, हमें अच्छा फील करवाने, हमें रिजुविनेट फील करवाने और हमें वो सारी की सारी अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए मिल जाता है जो कि बाकी के फेस्टिवल हमें नहीं मिलते। तो फेस्टिवल्स आर वेरी गुड, बट वो कभी कभार आते हैं, सो हमें उस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो हमेशा हमें आकर अच्छा फील करवाती है, एंड दैट इज वीकेंड। वीकेंड आता है तो हम इतनी सारी प्लानिंग करके होते हैं, यू नो व्हाट, शॉपिंग करने जाएंगे। वीकेंड आता है तो हमें ऐसा लगता है ओह वो मूवी लगी है ना, नहीं वो मूवी देखने जाएंगे। वीकेंड आता है तो हम अपने दोस्तों को कहते हैं अरे तुझे पता है वो वाला जो नया स्पॉट एक बहुत ही अच्छा कैफे खुला है, लेट्स जस्ट गो देयर। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें हम वीकेंड के लिए प्लान करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वीकेंड्स आर सो सो सो स्पेशल। सो आप मुझे बताइए आपने इस वीकेंड के लिए क्या स्पेशल फील करवाया है, आई मीन स्पेशल प्लान किया है। और इसी के साथ हम करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत, और आपको पता है प्रोग्राम की शुरुआत होती है, इस प्रोग्राम की खासकर शुरुआत होती है 10 चुनिंदा गानों के साथ। और 10 चुनिंदा गानों में सबसे पहला गाना कौन सा है, ट्रेंडिंग गाना कौन सा है, वेल वो है 10वें नंबर का गाना दिल वाले चोर। दिल वाले चोर ये गाना है पति पत्नी और वो दो मूवी का। सो आपको पता है ये ट्रेंडिंग गाने होते हैं, हॉट गाने होते हैं, हैपनिंग गाने जो कि आपको पूरी तरह से एंटरटेन करने के लिए लाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 गानों का ये चुनिंदा 10 गानों का ये प्रोग्राम है। लेकिन वो गाने जो बिल्कुल भी एवरेज नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है, उनके साथ हम आ गए हैं। 10वें नंबर का गाना जो है मैंने आपको बता दिया दिल वाले चोर है पति पत्नी और वो दो मूवी का, जो कि लगी हुई है थिएटर्स में। देखिए इसे एंड मुझे बताइए आपको कैसी लगी, और तब तक के लिए ये गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये गाना आपने सुना, पहला गाना आई मीन 10वें नंबर का गाना, पहला तो एकदम एंड में आएगा क्योंकि वो है नंबर 1 सॉन्ग और वो है टॉप सॉन्ग और उसके लिए थोड़ी तो मिस्ट्री बनाकर रखनी पड़ेगी, राइट। अब जरा बात कर लेते हैं 9वें नंबर के गाने के बारे में। जी हाँ, 9वें नंबर का गाना है जवानी तो इश्क होना है। जी हाँ, है जवानी तो इश्क होना है। अब इसके बारे में एक बहुत ही फनी चीज है जो वायरल हो रही है और जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, विच आई एम गोना टॉक अबाउट। पर पहले आप ये गाना सुनो क्योंकि गाने का नाम है वाव न न न न न न न न वाव वाव। आप लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस न न न न न। अरे आपको पता तो है, कभी कभी हमारे दिमाग में ना म्यूजिक चल रहा होता है लेकिन हमें उसे एग्जैक्टली जो है वो रखना नहीं आता सामने, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होता है न न न न न न न न न। या यू नो व्हाट आई मीन राइट। जी हाँ, यहाँ पर ये गाना जिसमें वरुण धवन है और साथ में है मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े। जी हाँ, पूजा हेगड़े एंड मृणाल ठाकुर। अभी पूजा हेगड़े और वरुण धवन जब इसका प्रमोशन कर रहे थे तो पूजा हेगड़े ने शेयर किया कि कैसे वरुण धवन और वो सेम स्कूल में थे। जी हाँ, और तब वरुण धवन कहते हैं पर तब पूजा ऐसी नहीं दिखती थी जैसे अब दिखती है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ इसके मामले में और एक बहुत ही फनी बात और फनी के साथ दिलचस्प बात, बट ऑफकोर्स उसके बारे में क्रिटिसिज्म भी इनको मिल रहा है। बट पहले हम आपको गाना सुनाते क्योंकि गाने का नाम है वाओ।

जी दोस्तों, वाओ, गाना तो बहुत वाओ है, लेकिन इसमें एक चीज दिखाई जा रही है, दिखाई जाएगी, जिसके बारे में बात हो रही है, एंड वो है वरुण धवन की मॉम का कैरेक्टर। मतलब वरुण धवन जो है वो 39 इयर्स के हैं और उनकी मॉम का कैरेक्टर प्ले करने वाली है अपेरेंटली मौनी रॉय। या यू हर्ड मी राइट। अब आपको पता है मौनी रॉय की एज क्या है? मौनी रॉय की एज है 40। मतलब वरुण धवन जो कि 39 के हैं वो उनके बेटे का कैरेक्टर प्ले करेंगे और मौनी रॉय जो कि 40 की है, जो कि सिर्फ एक साल उनसे बड़ी है, वो उनकी मॉम का कैरेक्टर प्ले करेंगे। वेल, जब से लोगों को पता चला है, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये कौन सा मतलब लॉजिक बन रहा है भाई, कौन सा लॉजिक बन रहा है। मतलब एक्ट्रेसेस को एकदम से ऐसे कैरेक्टर्स क्यों प्ले करवा दिए जाते हैं जहां पे बड़े बड़े हीरोज को उनका बेटा बना दिया जाता है? लाइक वॉट is happening, but what is happening तो तब होगा ना जब ये पहले से नहीं होता आया था, ये पहले से ही होता आ रहा है। जब एक्ट्रेसेस जो है वो 40 क्रॉस करती थी या 40 तक पहुंचती थी तो उनको माँ बना दिया जाता था बड़े बड़े हीरोज का। सो या दैट इज वॉट हैपनिंग हियर। नाउ आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि क्या वो उनकी सौतेली में एक माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है या रियल माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, बिकॉज मूवी देख के ही आपको ये पता चलने वाला है। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, विच इज रूप दी रानी। जी हाँ, रूप दी रानी जो है वो भी एक जबरदस्त सा गाना है और ये है किसका गाना? सोचिए सोचिए कौन सी मूवी का। वेल, आप गाना सुनिए, देन आई एम गोना टेल यू अबाउट इट।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best and the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Fire ants, tuhaade ilaake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ke tuhaade kar jaan jayadaad vich fire ants han, ta es di soochna deo. Asi tuhanu फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे. होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो. ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ. तो दोस्तों, वीकेंड तो किक इन कर चुका है, अब जरा आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमारी जो सेलिब्रेशन है जो कि बेसिकली हम गानों के माध्यम से आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि दिस प्रोग्राम इज अबाउट ग्रेट ग्रेट सॉन्ग्स. आगे की ओर बढ़ते हैं और धुरंधर अनकट वर्जन अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आपने क्या देखा है. जी हाँ, धुरंधर का अनकट वर्जन आ गया है. कहां पर? वेल ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पर. आप उसका अनकट और अनदेखा वर्जन देख सकते हैं जो कि थिएटर्स में भी लोगों ने नहीं देखा था. और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए. और अगर आपने धुरंधर ही नहीं देखी है जो कि पहला पार्ट है तो भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा. सो देख लीजिए क्योंकि आपके जमील मामू यही कह रहे थे कि पुत्र जरा देख ले. अनदेखा वर्जन जो है वो देख ले. जी हाँ, जमीर मामू जो है वो सबसे ज्यादा फेमस हो चुके हैं. और यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको वारी जावा. जी हाँ, जैसे कि मैंने धुरंधर के बारे में बात कर ली है, डिलीवर कर दिया है धुरंधर यानी कि रणवीर सिंह ने खतरनाक परफॉर्मेंस को एक मूवी जो कि लिटरली तूफान की तरह आई. और उस तूफान को मैच कर पाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है. और बहुत वक्त तक कोई भी मूवी से मैच नहीं कर पाएगी, खासकर जो बॉलीवुड बना रहा है. लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस. बट यहाँ पर वारी ड्रामा का क्रेज भी उतना ही खतरनाक है. तो आइए जरा उसके क्रेज को करने देते हैं यहाँ को हमारे इस प्रोग्राम को डोमिनेट. और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें.

जी दोस्तों, तो ये था धुरंधर का नी मैं वारी जावा। मेरा सोना है यार, मतलब मैं तो मर जाऊंगी। मेरा यार मतलब मेरा जो यार है वो इतना सुंदर है जी, यही मतलब हुआ इन शब्दों का। और इसी के साथ लिटरली ये मूवी जो है वो कमाल है। तो कमाल के साथ आप भी धमाल कर डालिए, देख डालिए। और आपको नेटफ्लिक्स पे देखना है इसको। अगेन इट्स नॉट अ PG-13 मूवी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कर्सिंग। अगर आप थोड़े कमजोर दिल के हो तो फिर छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, विच इज सुनो ना दिल। जी हाँ, वारी जामा जो है वो एकदम इंटेंस गाना आपने अभी सुना, लेकिन ये जो गाना है ना, ये आपको एकदम ऐसे लगेगा कि आप किसी पिकनिक पे निकल गए हो। आपको ऐसा लगेगा कि वाह कितना प्यारा फ्लूट प्रेटर, यानी कि वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह ला गई है आपकी आरजे निविया जी। हाँ, सो फ्रूट प्लेटर जो है किसी ने आपके सामने रख दिया, प्यारी प्यारी गेम्स खेल रहे हो, एक स्प्रिंग जो है आफ्टरनून है, वैसी फीलिंग आपको ये देने वाला है। क्यों? वेल, गाना सुनिए फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये है दादी की शादी का गाना। दादी की शादी में नीतू सिंह ने दादी का कैरेक्टर प्ले किया है, पौधे का कैरेक्टर प्ले किया है कपिल शर्मा ने। और जब वो शादी करने लगे होते हैं तभी उनको पता चलता है कि उनकी शादी तो होगी होगी, लेकिन उससे पहले दादी शादी का प्लानिंग कर रही है। क्या है माजरा? तभी पता चलेगा जब आप गाना सुनोगे, जब आप मूवी देखोगे। गाने में आपको मजा आएगा, वो स्प्रिंगी स्प्रिंगी वाली फीलिंग होगी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के।
2: अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?

0: लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपनी आधी लिस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं बाय द वे। अब आगे की जो आधी है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सच में आपको काफी कूल लगने वाला है। सबसे पहले तो क्योंकि इसे अरिजीत सिंह ने गाया है, और दूसरी बात इसे प्रीतम ने बनाया है, और तीसरी बात कॉकटेल 2 के गानों में सबसे पहले इसे ही ड्रॉप किया गया था। मतलब यही गाना हमें पहले सुनने को मिला था, और इसको सुन के हमारी पार्टी वाली वाइब जो है, और वो भी नॉर्मल पार्टी वाली नहीं, बीच पार्टी वाली वाइब जो है वो एकदम मतलब यू नो एग्जीक्यूट हो गई थी लिटरली। सो आपने अगर इस गाने को नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, क्योंकि ये है जब तलक, और बहुत ही क्लासी गाना है। आई मीन प्रीतम एंड अरिजीत टुगेदर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, राइट? मतलब ऑफ कोर्स इट शुड बी मैजिकल एंड इट इज मैजिकल। सुनते हैं इसको। बाय द वे 19 जून को रिलीज होने वाली है कॉकटेल 2, जो कि कॉकटेल का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट से मेरा मतलब है तो सेकंड पार्ट, लेकिन कहानी क्या होगी वो देखना होगा। और तो और जो पहली कॉकटेल है वो लेजेंडरी है, क्योंकि उसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान एंड डियाना पेंटी थे, एंड दीपिका पादुकोण के करियर को किक स्टार्ट, असली किक स्टार्ट उसी मूवी से मिला था। सो माइंड यू उनके लिए वो मूवी बहुत ही जबरदस्त थी। यहां पर वैसा ही कैरेक्टर कृति सैनन प्ले करती हुई नजर आ रही है, और शाहिद कपूर के साथ रश्मिका मंदाना इस मूवी में नजर आएंगी। वेल 19 जून को पता चल जाएगा कि क्या मैजिक क्रिएट कर पाए हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जब भी किसी फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट को बनाया जाता है, जो कि ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी है। ऐसे में दबाव होता है, प्रेशर होता है एक्टर्स पर भी, डायरेक्टर्स पर भी, सभी पर। क्या उस प्रेशर पे ये अच्छे से काम कर पाएंगे, उस पर खरे उतर पाएंगे, लेट्स सी। 19 जून तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये गाना सुनिए, क्योंकि इस गाने के लिए आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना कि एकदम पार्टी वाली फीलिंग आएगी, वो भी नॉट जस्ट नॉर्मल पार्टी बट बीच पार्टी वाली, क्योंकि इस गाने को बनाया ही ऐसे जाते हैं कैसे गाने के तरफ, जो कि गाना है बेसिकली अभी जो लगी हुई है मूवी उस ही का। जी हाँ, खासियत है गाने का नाम और मूवी का नाम है चांद मेरा दिल। वेल ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मूवी, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड अगर हम इसे कहेंगे तो ठीक रहेगा। इफ दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी, डोंट गो फॉर दिस मूवी, क्योंकि आपको सच म्यूजिकल्स के लिए पिछला साल बहुत अच्छा रहा है, लेट्स सी इसके लिए कितना अच्छा रहा है। अभी के लिए सो फार अभी के लिए ये मूवी जो है वो ठीक काम कर रही है, ज्यादा

जी दोस्तों, और इसी के साथ मैं अब आपको बता दूं कि थिएटर्स में आपके लिए क्या क्या है और कुछ नया है भी या नहीं, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे चांद मेरा दिल लगी हुई है, इट्स अ रोम कॉम नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ड्रामा है, म्यूजिकल है, रोमांटिक है, और ड्रामा से मेरा मतलब है बहुत सारा रोना धोना भी है। सो अगेन, अगर वो आपको पसंद नहीं है देन डोंट गो फॉर दिस मूवी। इसी के साथ अगर आप अच्छी अच्छी थोड़ी हल्की फुल्की मूवीज देखना पसंद करते हैं देन दादी की शादी इज गुड फॉर यू। जी हाँ, दादी की शादी आप देख सकते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं भूत बंगला, जो कि ऑलमोस्ट अब थिएटर से उतरने वाली है, जो कि रोमांटिक कॉमेडी नहीं है बल्कि हॉरर कॉमेडी है। जी हाँ, रोम कॉम नहीं है बल्कि हॉरर कॉम है। जी आप लोग बोलोगे ये क्या बोल दिया तुमने, बट द थिंग इज कि रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, हॉरर कॉमेडी है, मतलब डर भी लगेगा, हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा। जी हाँ, इसी के साथ एक और मूवी जो कि पति पत्नी और वो दो, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि कैसे आप ये मूवी भी देख सकते हो। इसमें आयुष्मान खुराना है, वामिका गाबी है, मतलब पति है आयुष्मान खुराना, पत्नी है वामिका गाबी, और वो दो जो और उसमें ऐड किया गया है वो है सारा अली खान एंड राकुल प्रीत। अब यहाँ पे क्या चल रहा है माजरा, ये तो बॉलीवुड वाले ही जानते हैं क्योंकि वो ऐसी मूवीज बनाने में बहुत आगे हैं। आपको ऐसी मूवी एंटरटेनिंग लगती है तो यू कैन गो फॉर इट, वेल ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है और रोमांटिक मूवी है, इट्स अ रोम कॉम, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ अगर आप देखना चाहते हैं कुछ बहुत ही प्यारा सा और कृष्ण भगवान से रिलेटेड एक मूवी जो है वो आई है, जिसका नाम है कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट, और इससे बनाया गया है सत्यभामा, जो कि कृष्ण भगवान की दूसरी रानी थी, उनके उनके पर्सपेक्टिव से, नजरिए से। सो ऑफ कोर्स आप ये भी देख सकते हो। इसके अलावा, ये सब के अलावा आप देख सकते हैं द लीक ऑन इन द ममी, ये है हॉरर मूवी और खतरनाक खतरनाक वाली हॉरर मूवी है। अगर आपको डर लगता है डोंट गो फॉर इट, लिटरली डोंट गो फॉर इट। मैं भी थिएटर से भागने का सोच रही थी तीन बार जब मैंने इसे देखा था। इसके साथ स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू भी लगी हुई है, यू कैन वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। और साथ में मोर्टल कॉम्बैट सेकेंड, या मोर्टल कॉम्बैट सेकेंड, जो कि मोर्टल कॉम्बैट का सेकेंड पार्ट है, गेम भी है, बहुत फेमस फ्रेंचाइजी है, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। बहुत सारी मूवीज है, बहुत कुछ है देखने के लिए, कुछ भी चूज कीजिए और मुझे बताइए इसमें से आपकी चॉइस है क्या। अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही जैजी है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, वेल ये है माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। वेल वेल वेल, जब मैंने इस गाने को सुना था ना, मतलब यू फील पैशनेट एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, सुनिए आप इसको, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा।

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। मतलब सब कुछ एकदम तीखा है, सब कुछ एकदम हॉट है, यानी कि गर्म है लेकिन नरम बिल्कुल नहीं है। क्यों नरम नहीं है? वेल, ये गाने इतने जबरदस्त है, इनको सुन के आपका डांस करने का मन करता है। और वो जो पिछला गाना आपने सुना माशू का, वाई डिड आई सेड कि ये गाना जो है वो आपको पैशनेट वाली गुफाओं में ले जाएगा। मतलब पैशनेट वाली गुफाओं से मेरा मतलब है कि पैशन जहां भर भर के है वैसी वाली फिजाओं में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाना सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि बचपन में कभी भी आपने सालसा करने की कोशिश की हो या जवानी में की हो, तो वो सारा का सारा सालसा एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा, वो मूव्स आपके दिमाग में आ जाएगा। ऑल यू नीड इज अ पार्टनर एंड यू आर गोना बी लाइक ओके लेट्स जस्ट ग्रूव, क्योंकि ये गाना सच में वैसा ही था। चलिए इसी के साथ अब इस गाने की बात करते हैं। जो मैं आपको सुनाने वाली हूं वो है ख्वाब देखूं, और ये है मूवी एक दिन का गाना, और ये है जुनैद खान और साई पल्लवी की मूवी का गाना, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की है मूवी। ठीक ठीक है, बट द थिंग इसकी गाना बहुत ही ज्यादा खास है, और जब जब आप इसे इस किसी रील में देख ले रहे हो, अभी कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने लद्दाख के एक बहुत ही फेमस माउंटेन गोंबू रंजन के बारे में एक रील बनाई हुई थी, और उस गाने को, इसी गाने को उसमें लगाया हुआ था, और वो इतना क्लासी लग रहा था, इतना खास लग रहा था। लोगों को अपनी रील्स के लिए ये बेस्ट चॉइस लग रही है। क्यों? आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा, और फिर हम करते हैं आगे की बात।

में करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मतलब इसके खत्म होने के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। गाना सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी पढ़ा है कि अरिजीत क्या गा देते हो तुम, क्योंकि अरिजीत के बहुत लास्ट वाले प्लेबैक सिंगिंग के जो जर्नी के गाने हैं वो यही है। आई नो, ओह यू डोंट नो, वेल अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। सो या ये उन कुछ गानों में से हैं, चंद गानों में से हैं जो उन्होंने एकदम लास्ट में गाए हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब जरा चलते हैं सीधा अपने नंबर वन सॉन्ग की तरफ, जो कि है आखिरे इश्क। दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस लिस्ट। वाई? बिकॉज दिस इज सो सो सो सो ब्यूटिफुल। और अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि ये उस वक्त आता है, उस मौके पर आता है जब आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि ओ माय गॉड, ये गाना हमारा दिल चीर देगा। क्यों? वेल, मूवी देखने वालों को ही पता है वो तो, क्योंकि ये है आखिरी इश्क, जिसे जुबिन नौटियाल ने गाया है, शाश्वत सचदेव ने बनाया है और धुरंधर द रिवेंज का ये गाना है। और जुबिन नौटियाल ने इस गाने को बनाने के बाद सच में शादी भी कर ली, मतलब आखिरी इश्क को मुकम्मल उन्होंने कर दिया बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गाने को ऑनर करने के लिए। व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, राइट? इसी के साथ मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: quality spices, lentils, rice, flour or frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane ke best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. Aur fresh local produce bhi rakhte hain. Saath hi kitchenware and disposable plates ki large range kisi bhi function ke liye.
1: Are wah! Intelligent ho gayi ho.
0: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ
3: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਮਨੀ ਫਰਮ ਯੋਰ ਐਂਟੀ ਡਰਿੰਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਿਦ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
4: Containers
3: for 10
4: for change
3: cents
4: today.
3: Containers for Change ke madhyam se apne khali dibbe botlon se dhan rashi kamaye. Aapke pratek yogya khali can, bottle aur carton par 10 cent ka refund prapt hota hai. Ise hum Bincoin kehte hain. अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिनकॉइन कहंदे हां। अपने बिनकॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
5: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
6: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
7: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
8: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
7: Acha, wo kya?
8: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
7: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
8: Are, receivers ab cash pickup, bank transfer ya mobile wallet mein bhi le sakte hain money. Download kijiye Lotus Foreign Exchange online au.lotusfx.com app aaj hi visit kare.
9: Duniya ke kisi bhi kone mein raha, tumse kitna bhi faasla raha, yakeen mano bachpan se aaj tak har pal har mood tumhe saath paaya. समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो.

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स. रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई.
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी. चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.